आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है भोर सुहानी। दोस्त हमें प्रेरित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए दोस्त जीवन में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है।

जिस तरह जीवन में अच्छी हवा, अच्छा खान पान जरूरी है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी बहुत जरूरी है। आपको स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका भी निभाती है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अपने लिए, अपनी सेहत के लिए थोड़े हंसी के पल अपनी फैमिली के साथ जरूर निकालिए।

0: और इस समय कह रहा है कि अब आप से अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: और गल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ टिक टिक टिक टिक
2: टिक टिक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविक

0: में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with the participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages with the programme focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilisation at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants travelling across multiple states, districts and villages. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlighting the urgency of reform. He stressed that continuing to delay reform perpetuates

FM Rainbow 101.9. Good morning, Hyderabad. Good morning, Hyderabad.

0: ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही। सबसे पहले द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशू। रोशिबिना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल में भारत को और अपने लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। जी हाँ, शी कंप्लीटेड अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन द एशियन गेम्स। आपको याद दिला दे कि रोशिबिना देवी के नाम 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है, 2022 में वो सिल्वर पदक से भी सम्मानित करी जा चुकी है और उसके साथ अब 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। She took the silver medal in the women's Sanda 60 kilogram category after a hard-fought battle against China's Xiao Zhang. The best news of the day, Shabab ji.
1: Yeah, बिल्कुल, आज का दिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे भारतीय खेल प्रेमियों के उठने से पहले, जागने से पहले एक पदक आ गया था और ये पदक दिलाया था, चूंकि ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी, दिन की बोनी कराई सतनाम सिंह और सलमान खान ने। पुरुष डबल्स एकलस में कांस्य पदक के साथ ये बोनी कराई। इस वर्ग का जो स्वर्ण पदक चीन और रजत उज्बेकिस्तान के हिस्से में गया। सतनाम और सलमान 500, 1000 और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे कि इस दौरान वो चीनी जोड़ी से आधे सेकंड से मात्र पीछे रह गए। वो काफी निराशाजनक रहा था वो सीन, लेकिन अंतिम चरण में आखिरकार पिछड़ गए। वो जो आधा मिनट का जो समय था वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें ये पिछड़ गए।
0: सही बोला आपने शाबाब, और हम आगे बढ़ेंगे। एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे। हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड फिफ्थ इन लास्ट इन अर हीट विद द टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स, अर्निंग 868 पॉइंट्स। जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स। वहीं मिक्स 4x400 मीटर रिले हीट 2 में मनुटी हैज पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एम आर पूवामम्मा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड। जयकुमार मेंटेन द एडवांटेज डिस्पाइट चाइना एंड यूएई क्लोजिंग इन एंड आफ्टर स्लाइटली स्लो एक्सचेंज एंकर किरण पहल हेल्ड द फ्रंट पोजीशन इनटू द फाइनल लैप। चाइना मेड अ लेट सर्च टू पिप इंडिया एट द लाइन बट द इंडियन टीम सेफली क्लिंच्ड द सेकंड प्लेस टू बुक देयर स्पॉट इन द फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ 13:16.23 सेकेंड्स। और वुमेन्स हेप्टाथलॉन हाई जंप में भी अनामिका अनीश ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके इन हाई जंप क्लियर्ड अ बेस्ट हाइट ऑफ 1.74 मीटर्स टू फिनिश सेकेंड इन द इवेंट एंड गैदर्ड 903 पॉइंट्स। जी हाँ, पूजा क्लियर्ड 1.71 मीटर्स टू फिनिश जॉइंट फोर्थ, एडिंग 867 पॉइंट्स टू हर टैली। The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because अब अनामिका है 6th place पर 1,771 points के साथ और पूजा है 9th place पर 1,761 points के साथ। शबाब,
1: या बिल्कुल, उधर मेघा प्रदीप की बात करें तो महिला कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप। सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
0: राइट, और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहां पे ज्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट के अंदर भारत के बेनेडिक्टन बेनेस्टन फिनिश्ड फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स, ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। वहीं मेंस 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्टन अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वर एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर 6th टीम रेस। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड।

0: with a timing of 8 minutes 2.52 seconds, touching the wall 5.13 seconds behind Vietnam's Nguyen Hoi Hang. Aur iske saath hi Nehra did not leave this event with a podium placement also. Nirasha janak khabar swimming ki duniya se, Shabab.
1: हाँ, उधर अगर निशानेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया। हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई। वहीं आकाश भारद्वाज 579 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए।
0: जी, अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है। मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड, जो कि क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था। 6 सिल्वर आ चुके हैं, जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेटलिफ्टिंग में, 1 वुशू में। 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, 1 सॉफ्ट टेनिस में है, जो कल जय मीना लेके आए थे, विद हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड इन सॉफ्ट टेनिस, बिकॉज ये पहला मेडल है इस तरह के स्पोर्ट के अंदर भारत का। 1 बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया और आज 1 रोइंग में भी ब्रॉन्ज आ गया। तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स अभी तक, 14th पोजीशन पर है भारत। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी इस मेडल टेबल के अंदर पोजीशन को और ऊपर बनाएगा, यानी धीमे धीमे करके ऊपर क्लाइंब करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है शाबाब अहमद। हमें दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 10:30 एक बार फिर से। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो

0: 101.9 पर दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति। तो आइए जल्दी से सवार हो जाइए आपकी अपनी फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में, और बहुत सारी बातें होगी। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले तो भाई एज यूजुअल ज्ञानचंद जी का ज्ञान, उसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वैसे एक बार ना मैंने ज्ञानचंद जी से पूछा कि भाई ज्ञानचंद जी जिसकी शक्ल मिले वो कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बहन। और मैंने पूछा कि जिनकी अकल मिले वो, तो उन्होंने कहा अच्छे सच्चे दोस्त। फिर जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो, तो उन्होंने तपाक से कहा वो पति पत्नी होते हैं। चलिए और भी बातें हम करेंगे, पर फिलहाल एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दिए देते हैं, स्टे ट्यून्ड।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. చేవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञानचंद जी के भाई ज्ञान के मोती, तो मैं क्या ही कहूँ आपसे। तो अब मैं ना कोई खाली पीली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मतलब जो ज्ञानचंद जी का ये सो कॉल्ड ज्ञानचंद जी का ज्ञान है, खैर हम ऐसे और बहुत सारी बातें करेंगे भाई। हम आए हैं किस लिए? धूम मचाने के लिए। तो चलिए

101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। यदि आप अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। तो साथियों स्टे ट्यून्ड और आगे बढ़ते हैं। भाई आज तो गुरुवार है, कोई बात नहीं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और पर आपने कभी विचार किया है कि रविवार के बाद में सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार। यस, यही ट्रेंड क्यों फॉलो किया जाता है, रविवार के बाद में शुक्रवार क्यों नहीं आया, रविवार के बाद में या फिर सोमवार के बाद में शनिवार क्यों नहीं आया। जरा ठहरिए, जवाब देने से पहले एक बार सोचिए कि क्या सोमवार ने रविवार के बाद आने की कोई स्थायी बुकिंग करा रखी थी क्या? जैसे कोई टिकट एडवांस में बुक किया हो कि भाई रविवार के ठीक बाद का स्लॉट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। खैर मजाक की बात अपनी जगह, परंतु साथियों इस सवाल के पीछे छुपी है एक ऐसी परंपरा जो हजारों वर्ष पुरानी है जिसका नाम है ग्रह होरा परंपरा। और अब जो मैं आपके सभी के साथ साझा करूंगी वो सिर्फ कहानी नहीं, एक प्योर मैथ्स है, गणित है। इस परंपरा में सात ग्रहों को एक निश्चित क्रम में माना गया है, जैसे कि शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र।

उनका ऑर्डर है, ठीक है, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध और चंद्र। अब मान लीजिए कि किसी दिन का पहला ग्रह हो रहा सूर्य का है, तो आगे क्रम चलेगा सूर्य शुक्र बुध चंद्र शनि गुरु मंगल, और यही क्रम दोहराता रहता है बिना रुके, जैसे आप और हम बिना रुके बात करते हैं, है ना। अब आता है असली गणित जो सबसे मुख्य है। एक दिन रात में कुल 24 ग्रह होरा माने जाते हैं, और ध्यान रहे यहां होरा का अर्थ आज की घड़ी वाला ठीक 60 मिनट का एक घंटा वो वाला नहीं है। पारंपरिक पद्धति में ना दिन और रात के समय को अलग अलग 12-12 हिस्सों में बांटा जाता है। जी हाँ, इसलिए होरा की अवधि जो है वो मौसम और स्थान के अनुसार बदल सकती है, अर्थात ये घड़ी की सुइयों का खेल नहीं, सूरज और चांद की चाल का खेल है। अब 24 को 7 से आप बांट के कितना शेष बचा, 3, यानी 24 ग्रह होरा पूरे होने के बाद में अगले दिन का पहला ग्रह पिछले दिन से 3 स्थान आगे पहुंच जाता है। अब चलिए इसी गणित से जो हम जवाब निकालते हैं, आप निकालना चाहेंगे? हाँ, बताऊंगी भाई, बिल्कुल बताऊंगी, पर फिलहाल जब बात जो है वार की चल ही रही है, तो हम भी देखते हैं कि शनिवार की रात को क्या चलना है।

0: हाँ, जरा सोच समझ के कहिएगा भाई। दोस्तों, सैटरडे नाइट आप आपकी नहीं सुनते हैं, किसी के बाप की नहीं सुनते हैं, सही है, पर जो शादीशुदा है वो उन्हें अपने घर में अपने बीवियों की तो सुनना ही पड़ेगा, है ना? और ये मेरा नहीं, ये ज्ञानचंद जी का ज्ञान है। वैसे मैं किसी को फोर्स नहीं करती अपनी बात मनाने के लिए या सुनाने के लिए, राइट? साथियों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दिए देते हैं, स्टे ट्यून्ड।
1: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
2: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर।
1: मोर देन फूड, इट्स द स्टोरीज बिहाइंड द रेसिपीज, द हिस्ट्री ऑफ द किचन्स एंड द फ्लेवर्स दैट शेप्ड आवर सिटी।
3: एंड वेयर डू वी टेस्ट ऑल दिस?
2: ऑन जश्न ए हैदराबाद every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
5: FM Rainbow 101.9.

साथियों तो नमस्ते, हेलो, आदाब। में इस गीत को सुनने से पहले हम आपके साथ जो है संडे के बाद में मंडे ही क्यों आता है वो गणित आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 24 ग्रह हो रहा पूरे होने के बाद अगले दिन का पहला ग्रह जो है वो पिछले दिन के ग्रह से 3 स्थान आगे पहुंच जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चलिए इसी गणित से हम जवाब निकालते हैं। रविवार का ग्रह सूर्य है और सूर्य से 3 स्थान आगे हैं सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। यानी कि सूर्य के बाद में शुक्र आएगा, शुक्र के बाद में बुध आएगा, बुध के बाद में चंद्र आएगा। तो चंद्रमा से जुड़ा दिन है सोमवार। तो देखा आपने, ये कोई सोमवार की जिद नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है भाई। ये तो जो है शुद्ध प्राचीन ग्रह होरा परंपरा का सटीक गणित है और फिर यही क्रम आगे चलता रहता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। हमारे रोजमर्रा के जीवन की कितनी ही साधारण चीजें जो चीजें हैं उनके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। कहीं इतिहास, कहीं परंपरा, तो कहीं गणित की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ना। तो चलिए ऐसी ही कहानियों के और हम आगे बढ़ते हैं। भाई 14 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा हमारे यहाँ पधारे है ना, और फिर कल अनंत चतुर्दशी के दिन पुनः यहाँ से प्रस्थान करेंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि घरों से प्रारंभ होने वाला ये त्योहार कैसे सामूहिक हो गया? अर्थात गणपति की सार्वजनिक पूजा, सामूहिक स्थापना की शुरुआत आखिर कैसे हुई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश पूजा और गणेश उत्सव की परंपरा तो बहुत पुरानी है, परंतु सन 1890 यानी कि 1890 के दशक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और सामुदायिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ साथियों, उस दौर में उन्होंने गणेश उत्सव को एक ऐसा मंच बनाया जहाँ लोग बड़ी संख्या में एक साथ आ सके, पूजा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और समाज के लोग आपस में जुड़े। और यहीं से सार्वजनिक गणेश उत्सव ने महाराष्ट्र के जो है सामाजिक जीवन में एक नया रूप लेना शुरू किया और धीरे धीरे धीरे सभी जगह ये सामूहिक गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। यहां तक तो ठीक है, परंतु आपने एक बात गौर की, बप्पा आए तो गणपति बप्पा मोरिया, कल प्रस्थान करेंगे तब भी गणपति बप्पा मोरिया। भाई गणपति बप्पा तक तो ठीक है, लेकिन ये मोरिया कौन साहब है जो हर बार बप्पा जी के साथ आ जाते हैं? आप भी सोच में पड़ गए ना। चलिए जानने के लिए सुनते रहेगा रेनबो एफएम 101.9। अपने छोटे से दिमाग को इतना बड़ा सा टेंशन मत दीजिए भाई, मैं हूं ना। जब बात बप्पा की चल ही रही है तो चलिए हम भी बप्पा की और ही चलते हैं।

0: एशियाई गेम खेल जो एशियन गेम्स चल रहे हैं 2026, एशियन गेम्स 2026 जो जापान में चल रहे हैं, उनके अपडेट्स की. स्टे ट्यून्ड.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
2: नमस्कार, एशियन गेम्स की हलचल की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं शबाब अनवर और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल. आज सुबह बहुत अच्छी हुई थी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से रोशबीना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल जिलाया और उसके बाद सतनाम और सलमान की जोड़ी ने हमें रोइंग में मेडल दिलाया, लेकिन उसके बाद जो एक घंटा गुजरा है वो सन्नाटा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में. कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं रहा है. काफी ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजी में भारत को हर इस तरह के मल्टीपल इवेंट में रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है. निशानेबाजी से हम शुरुआत कर लेते हैं. अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत इस बात की है कि अनंतजीत सिंह नारुका और पनिराज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है. फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है. भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है. भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था. उधर भारत के पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है. अगर कहा जाए तो देलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया.
3: जी, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड टू में हरा दिया. इंडियन टीम वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिया चिटले एंड यशस्वनी घोरपड़े, हु सिक्योर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-0 विन ओवर ईरान विद 11-2, 11-2, 11-4. एंड देन वुमेन्स डबल्स राउंड टू के अंदर भारत की एक और महिला जोड़ी उतरी, दिस टाइम फेसिंग अगेंस्ट देयर मंगोलियन ओपोनेंट्स, जहां पर हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी आसानी से मंगोलिया को भी 3-0 से शिकस्त दे दी. श्री जाकुला and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 11-5, 11-4, 12-10 victory over bowler Erdin Botmuk and Sanja from Mongolia. While men's singles round 1 May, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline, which read like 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So early start right now for table tennis, but definitely small little smiles, क्योंकि यहाँ पर भारत को at least शुरुआती जीत मिलनी शुरू हो गई है. शबाब
2: जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी देते रहेंगे. बहुत सारे खेल आज नए स्पर्धाएं भी शुरू हुई हैं, उसमें एक फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी भी है और उसमें महिला वर्ग में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि तलवारबाजी स्पर्धा में भारत की भवानी देवी पूल 4 में चौथे और श्रेया गुप्ता पूल 2 में दूसरे स्थान पर रही हैं. ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है. आगे बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश इस मुकाबले में है.
3: जी, और अब स्क्वाश से भी आपको दे देते हैं अपडेट, जहां ऑल इंडिया क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 हुआ था, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विल्वन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियन सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स doubles quarterfinals. The second game proved to be a thriller, with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level it at 9-9 and earn a game point. However, Joshana Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
2: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स में. आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की. मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है और पहला मुकाबला था जापान यानी जो मेजबान टीम है और अफगानिस्तान ने, तो वहां से यह खबर आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है. और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में. 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा. फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी हो गई
3: जी। और कबड्डी ने भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपाई इन द मेंस ग्रुप ए मैच। और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया। और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है, भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक और चाइनीज तिपाई अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए हैं इन द सेकेंड हाफ। द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग, इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स, वाइल चाइनीज तिपाई स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार। सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज इजी इन दिस गेम। और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स पिस्टल शूटर्स रिटर्न एम्प्टी handed from the Asian Games with no medal in either individual or team events so far, जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे। लेकिन एक overall अगर आपको picture दे तो pistol ने अभी तक 7 medals produce किए in the last 2 Asias, 3 gold, 2 silver, 2 bronze। और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी mixed doubles के events बाकी हैं। तो ये थे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए, जो शबाब और मैं साक्षी आपके लिए लेकर आ रहे थे। दोबारा एक बार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

साथियों, नमस्ते, हेलो, आदाब में आप और हम तो बात करते हैं, पर तनिक विचार कीजिए कि हमारी तरह सड़क पर गाड़ी भी एक दूसरे से बात करने लगे तो भविष्य में आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से कह रही है, ओए जरा संभल के, मैं पीछे हूँ, ब्रेक मत मारना अचानक। और आगे वाली गाड़ी कहती है, अरे टेंशन ना ले, मैं तो खुद डरी हुई हूँ, सामने एक और कार है, ऑटो नहीं। क्या लगा है आपको मैं ये सारी मनगढ़ंत बातें कर रही हूँ? अरे बिल्कुल नहीं जनाब, यह शत प्रतिशत संभव है और इसी को कहते हैं V2V, यानी कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, यानी गाड़ी की आपस में गपशप, जैसे हम और आप करते हैं ना। तो दोस्तों, V2V तकनीक में गाड़ियां एक दूसरे से लगभग 150 मीटर तक की दूरी पर भी बात कर सकती हैं, वो भी सेकेंड्स में कई बार, बिना नेटवर्क, बिना सिम कार्ड, सीधा डायरेक्ट डायलॉग, यानी जैसे आपके मोहल्ले की आंटी को सब पता होता है ना, वैसे ही गाड़ियों को भी सब पता होता है कि कौन ब्रेक मार रहा है, कौन मोड़ रहा है, कौन सो रहा है ना। अच्छा, अब इसका ना सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये वाकई में जो तकनीक है बहुत गजब की है साथियों। सोचिए, आप एक बड़े ट्रक के पीछे फंसे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अचानक ट्रक ब्रेक मारता है और आप टकरा जाते हैं, परंतु V2V यानी कि वाहन टू वाहन, यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हो तो ट्रक पहले ही बोल देगा, भाई आगे जाम है, मैं ब्रेक मार रहा हूं, तू भी संभल। और आपकी गाड़ी आपको चेतावनी देगी, बॉस ब्रेक मारो वरना सीधे ट्रक की डिक्की में घुस जाओगे। दोस्तों, V2V यानी कि वाहन टू वाहन, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिर्फ तकनीक नहीं, ये गाड़ियों की दोस्ती है जो आपको दुर्घटना से बचाती है, ट्रैफिक जाम में हंसाती है और सफर को सुरक्षित बनाती है। तो अगली बार जब भी आप गाड़ी चलाएं तो जरा सोचिए कि कहीं आपकी गाड़ी पीछे वाली गाड़ी से ये ना कह रही हो कि भाई जरा गैप रखना, मेरी बॉडी नहीं है। तो ये V2V गाड़ियों की गपशप से ज्यादा हमारी सुरक्षा का इंतजाम है। वैसे आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि सरकार के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार 1 अक्टूबर सन 2028 यानी कि 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले नए L, M और N श्रेणी के वाहनों में इसकी व्यवस्था को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है ना। तो चलिए, जब बात गाड़ी की हो ही रही तो देखते हैं अपनी गाड़ी क्या कर रही है।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। साथियों जब बात गाड़ियों की चल ही रही है तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अपनी गाड़ी के टायर पर कभी आपने ध्यान दिया है, कभी उसे देखा है? वो जो टायर के साइड में छोटे नंबर और अल्फाबेट्स लिखे होते हैं जैसे कि JKM देखे तो होंगे, है ना? पर सोचा होगा कि टायर भी ABCD पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, ऐसे ही सोचे ना आप भी। परंतु कभी सोचा है कि सारे टायर्स पढ़ते पढ़ते सिर्फ ये JKM तक ही आकर क्यों रुक गए? भाई साथियों मजाक की बात और है, पर साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस छोटे से अल्फाबेट में टायर की स्पीड रेटिंग छुपी होती है। जी हाँ, अर्थात निर्धारित कंडीशंस और लोड के हिसाब से टायर किस मैक्सिमम स्पीड के लिए रेटेड है ये बताया जाता है। गौर कीजिएगा, जे का अर्थ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, के का अर्थ है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और एम का अर्थ है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां एक बहुत ही आवश्यक बात, यदि आपके टायर पर एम लिखा है तो इसका ये अर्थ कतई नहीं कि 130 पार करते ही टायर बोलेगा भाई मैं चलता हूं। नहीं, स्पीड रेटिंग कोई ऐसा मैजिक नंबर नहीं है कि एक किलोमीटर ऊपर गए और टायर तुरंत फट गया। ये बताती है कि टायर को निर्धारित कंडीशन में किस मैक्सिमम स्पीड के लिए रेट किया गया है और टायर की सेफ्टी सिर्फ इस अल्फाबेट पर डिपेंड नहीं करती। टायर प्रेशर सही है या नहीं, गाड़ी पर लोड कितना है, टायर पुराना तो नहीं, कोई कट डैमेज या बल्ज तो नहीं और बाहर गर्मी कितनी है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और विशेषतः गर्म मौसम में यदि टायर प्रेशर गलत हो तो आप लगातार तेज रफ्तार में चल रहे हो तो टायर पर स्ट्रेस और हीट बढ़ सकती हैं। तो अगली बार जब भी आप हाईवे पर निकलें तो केवल स्पीडोमीटर मत देखिए, एक नजर टायर पर भी डालिए साथियों, क्योंकि स्पीडोमीटर बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं और टायर की स्पीड रेटिंग बताती है कि टायर किस स्पीड के लिए रेटेड है। और हाँ, गाड़ी पर बड़ा इंजन होना, मीटर पर 200 लिखा होना और एक्सेलेरेटर का पूरा दबा देना, इन तीनों का मतलब ये नहीं कि सड़क आपको फॉर्मूला 1 का ट्रैक मिल गई है। यस, समझदारी यही है कि गाड़ी की रिकमेंडेड टायर स्पेसिफिकेशन, सही टायर प्रेशर, लोड और स्पीड लिमिट्स सबका ध्यान रखा जाए, क्योंकि गाड़ी चार पहियों पर चलती है और सड़क से आपका कनेक्शन भी उन्हीं चार पहियों का है। और याद रखिए साथियों, अपने गंतव्य पर तेज पहुंचना आवश्यक नहीं परंतु सुरक्षित पहुंचना आवश्यक है। अब ये सब आप जान गए हैं तब आप लॉन्ग ड्राइव पे बड़े बिंदास निकल सकते हैं।

साथियों लॉन्ग ड्राइव पर तो चलेंगे, पर दीन दुनिया से बेखबर होकर नहीं, क्योंकि समय हो चला है समाचारों का। जी हाँ, न्यूज हेडलाइंस का। ठीक 11 बजे हम आपसे न्यूज हेडलाइंस की ओर आपको ले चलेंगे।

तो साथियों, पुनः एक बार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, आपके धर्म पंडित आरजे प्रीति के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जब आगे बढ़ेंगे तो बिना ज्ञानचंद जी के ज्ञान के कैसे आगे बढ़ेंगे, बताइए आप ही। एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना ज्ञानचंद जी से पूछा कि सुनिए जी, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जादू जो होता है ना, वो कहाँ होता है? तो इस पर ज्ञानचंद जी ने बिना विचार किए कहा, ब्यूटी पार्लर में। अब उसके बाद में ज्ञानचंद जी के साथ क्या हुआ होगा, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना? क्योंकि वे साथियों, जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं।

0: 2026 की अपडेट का। तो आइए आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों शबाब अनवर, और हम लेकर आ गए हैं सुबह के 11:30 बजे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द लास्ट वन आवर। और सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग खबर जो आई है पिछले एक घंटे में वो रही बॉक्सिंग की दुनिया से, क्योंकि सुमित कुंदू का जो 70 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का बाउट था वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम हमदन अल सरे, वेल दैट उसमें बिकॉज ऑफ इंजरी ही हैड टू विथड्रॉ। यस, ही कुडंट कैरी ऑन एंड एज अ रिजल्ट दिस हैज बीन द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट हैज कम।

0: टू प्ले फॉर बॉक्सिंग बॉक्सिंग के काम से बिकॉज उनको फॉरफिट करना पड़ा अपना थर्ड राउंड. बता दें आपको कि सुमित लैंडेड बिग पंचेस अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजिलिस्ट. द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 बिफोर कासिम मेड अ बिट ऑफ अ कम बैक. हाउएवर द सेकंड राउंड वंस अगेन वेंट टू सुमित विद अ स्प्लिट डिसीजन ऑफ 3-2 बट डिजास्टर स्ट्रक जस्ट सेकेंड्स इन टू द थर्ड राउंड. As Sumit suffered a severe knee injury, slipping and hobbling before the medical officer stepped in to stop the bout. Commentators suspected an ACL injury, bringing a heartbreakingly abrupt end to his campaign. And because of this, Iraq's Ali Al-Sarai advanced to the quarterfinals. And Shabab, कहना पड़ेगा कि ये जो घटना उनके साथ हुई है वो definitely heartbreaking तो है.
1: Yeah, बहुत ही निराशाजनक है. क्योंकि काफी उनसे उम्मीदें भी थी और स्वयं भी काफी आत्मविश्वास से लबरेज थे अगर मुकाबले से बाउट से पहले की बात करें तो. लेकिन उधर हम अगर कबड्डी की बात करें तो यहाँ जलवा भारत का बरकरार है. लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने. चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में.
0: Right, and the other big news that we'll now bring to you, or rather should we move on towards, is from the world of squash, jahan par humne dekha ki Anahat Singh won and wrapped up a contest with an 11-7 victory in the third game, and thereby in the women's singles round of 16 clash was able to defeat her opponent 3-0 to qualify for the quarterfinals. It was a clean victory that came her way, 11-4, 11-5, 11-7. Good news from the world of squash. Aur usse pehle bhi agar hum squash ke kuch aur events ke upar aaj ek nazar dale to All Indian Clash in the mixed doubles round of 16 bhi humne aaj dekha. में जोशना चिनप्पा एंड विलवन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल्स. एंड मेंस सिंगल्स राउंड वन में भी मनुष शाह एंजॉयड अ कंफर्टेबल स्टार्ट टू हिज मेंस सिंगल्स कैंपेन विद अ विन ओवर मलेशियाज वोंग क्वी शेन ऑफ मलेशिया 11-9 14-12 11-7 11-4. सो कन्विंसिंग कंफर्टेबल कमांडिंग विक्ट्रीज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वाश स्पेशली फॉर द इंडियंस. और आज इसी इवेंट के अंदर और भी आप बहुत सारी इवेंट्स देखने वाले यानी स्क्वाश के अंदर जहां पर आप देखेंगे. अभी हमने देखा अनहद सिंह की वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 का क्लैश. उसके बाद अभय सिंह वीर चौटरानी तन्वी खन्ना विल आल्सो बी हैविंग देयर इवेंट्स टुडे.
1: होगा तलवारबाजी की बात करें तो सुबह 10:30 हमने एक अच्छी खबर सुनाई थी लेकिन अभी जो खबर है वो अच्छी नहीं है क्योंकि भवानी देवी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. हम श्रोताओं को बता दें कि भारत के सीए भवानी देवी महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं. उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है.
0: Right, and the big news that came in today early in the morning was from the world of wushu, jahan Roshi Bina Devi ne women's 60 kilogram final ke andar silver medal apne naam kar liya aur Bharat ka naam ek bar fir se roshan kar diya. Hat trick of medals for her in the Asian Games because 2018 ke Asian Games mein unko bronze se nawaza gaya tha, 2022 ke Asian Games mein unko silver se nawaza gaya tha aur ek bar fir se 2026 mein unhone silver padak apne naam kar liya. Goes to show her complete dominance in wushu in the 60 kilogram category which she obviously earned after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, hame pata hai, it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport. But we have Roshi Bina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
1: देखिए individual round में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी athlete ने जो कारनामा दिखा है उनमें वो सबसे आगे हैं. जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े और self defense के लिए जो उन्होंने जो अपनाया एक घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिले तारीफ है.
0: Right, and now a quick update also coming in from shooting, जहां आपको बता दे कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में वो है मिक्स टीम स्कीट के फाइनल्स के थ्रू बिकॉज इसके अंदर आपको बता दे द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनाज धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्कीट शूटिंग कॉम्पिटिशन एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. कतर साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर है ये तीनों देश. चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स. ये इवेंट 11:15 सुबह शुरू हो चुका है. इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद यानी दोपहर 12:30 आपको ऐसे में बताएंगे क्या हुआ. फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत. वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट. थैंक यू सो मच. गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

history as the greatest demonstration for freedom.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए
1: सजग रहिए।

0: A message came from Baswant Ji Shantinagar. He says, Preeti Ji, namaste, Rainbow Care listeners ko namaste. Oh, namaste, Baswant Ji. Now I'm traveling to my hometown. I was sleeping in the car, just got up and switched to radio Rainbow FM 101.9. Love to hear Preeti Ji's voice after a long time. Very motivating to listen your songs and subject. Oh, thank you, Baswant Ji. And he says that the exact point where I switched on is when we are speaking about car. Oh, thank you. And be careful while driving. And again he wrote, Jai Shri Krishna. Okay, Jai Shri Krishna. Kabhi kabhi thokane bhi achhi hoti hain. Ek to raaste ki rukawaton ka pata chalta hai aur dusra sambhalne wale haath kiske hain ye bhi pata chalta hai. Bahut khoob Baswant Ji from Shantinagar. So friends, now the studio clock is going to ring 11. It's going to ring 12 because at 12 exactly we will take you to the news. Yes. ठीक 12 बजे हम आपको ले चलेंगे हिंदी न्यूज़ के लिए, हिंदी समाचारों के लिए और 12:05 को न्यूज़ इन इंग्लिश. सो स्टे ट्यून्ड. और हाँ, जब आज आपने इस कार के बारे में सुना, सो टुडे जस्ट टेक आउट फ्यू मिनट्स टू नो योर कार. इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अस, क्योंकि जब आप सेफ रहोगे तब ही आपका परिवार भी सेफ रहेगा. और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप चलते हैं या जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो पुनः आपके घर लौटने तक कोई है जो आपका बेसब्री से इंतजार करता है. स्टे ट्यून्ड.
1: హిందీలోను ఆంగ్లంలోను వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: నమస్కార్, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए. श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही.
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
2: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है. डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई. भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
3: 2047 tak viksit Bharat ke nirmaan mein hame yuva shakti

और साथियों नमस्ते, हेलो, आदाब के शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति, जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटा लेकर आए, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो शुरुआत ज्ञानचंद जी के ज्ञान से। एक बार ना मैंने ज्ञानचंद जी से पूछा कि ज्ञानचंद जी, ये जो है लाइक और कमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो ज्ञानचंद जी ने तपाक से कहा कि पति पत्नी ना सिर्फ एक बार लाइक करते हैं शादी के पहले देखते समय, और उसके बाद में जब शादी हो जाती है और उसके बाद जब तक वे जिंदा रहते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ कमेंट ही करते हैं दोनों एक दूसरे पर। भाई साथियों, अब इसके बाद में क्या क्या हुआ होगा उनका ज्ञानचंद जी, श्रीमती ज्ञानचंद जी के साथ, ये मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ों का दर्द तो जड़े ही जानते हैं। पर फिर भी एक बात मैं अवश्य कहना चाहती हूँ, भले ही जो है आपके जीवन साथी आप पर कितना ही कमेंट पास करे, उनकी उनका जो प्यार है वो हमेशा उसके पीछे छुपा ही रहता है। इसीलिए तो वह कहती है, तू तो कैरी नहीं कर।

0: It's time for the Asian Games 26 update.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए एशियन गेम्स 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स दोपहर 12:30 बजे. इंतजार का सफर थोड़ा लंबा रहा आज के इस इवेंट के अंदर, लेकिन फाइनली वो सफर आकर समाप्त हुआ. मैं बात कर रही हूँ शूटिंग में. भारत की मिक्स टीम्स की फाइनल्स में हमारे भारतीय शूटर्स अनंतजीत सिंह नरूका और परिणाज धालीवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया. जी हाँ, अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस पुट अप बाय द टू इंडियन शूटर्स इन द मिक्स टीम स्केट फाइनल्स, अनंतजीत सिंह नरूका एंड परिणाज धालीवाल. एंड दे हैड ऑल द रीजंस टू स्टैंड टॉल एंड प्राउड फॉर देयर एफर्ट्स, बिकॉज डिस्पाइट टाइंग विद कोरिया एट 44 पॉइंट्स फॉर द नंबर टू स्पॉट, यानी दूसरे स्थान के लिए, दे हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज आफ्टर द एंड ऑफ द सिक्स सीरीज सिक्स ओइंग टू अ लोअर स्कोर इन क्वालिफाइंग राउंड. जी हाँ, बिकॉज द स्कोर्स ऑफ द इंडियन शूटर्स वर लो इन द क्वालिफाइंग राउंड.

0: Hence, they couldn't stand to be in competition for the second spot finish. But nonetheless, the effort of Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhalawal in itself is huge, commendable and appreciable. So here's to the Indian shooters and to the Indian men's team's key final events, which concluded with the bronze medal for India.
1: यहाँ कुल पदकों की संख्या 7-15 भी हो गई है. उधर स्क्वाश से भी अच्छी खबर आ रही है. तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, हम आपको बता दें, और अब है भी राउंड 16 में पहुंचे हैं. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश के विमेंस सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. उन्होंने सिंगापुर की केई गहन को 3-1 से पराजित किया. मेन सिंगल्स इवेंट में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली. वीर चित्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ पहला गेम 11-19 से जीता था, 11-9 से माफ कीजिएगा जीता था, जिस समय हम आए थे स्टूडियो. और उधर इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने सिंगापुर की ओ यू योंग वाईएन को 3-0 से हराया. तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-15, 11-7 से जीता और इस जीत के साथ ही अनाहत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. तो स्क्वैश में आज सुबह से ही अच्छी खबरें आ रही
0: जी. और क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं और ये सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो इसको मैं बरकरार रखती हूँ. कबड्डी की दुनिया से भी अपने श्रोताओं का हमें लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि एज वॉज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वॉज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम. इंडिया सिक्योर 37-21 विक्ट्री टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स एज द टॉप रैंक्ड टीम. इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत को कबड्डी की दुनिया से अब एक मेडल तो डेफिनेटली तय हो ही गया है. आप यह कह रहे कि थोड़े ही पलों में पता चल जाएगा कुछ घंटों बाद कल तक, लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी इज दैट इंडिया
1: रंग तो वही स्वर्णिम होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है. हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. तलवारबाजी में भी काफी उम्मीद थी भारत को, लेकिन खास करके भवानी देवी महिला वर्ग में, लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा. राउंड ऑफ 16 में वो हारी है. और ये जो साबरे में राउंड 15 का ये मुकाबला था, राउंड ऑफ 16 का कह दें हम, उससे वो बाहर हो गई. जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट चीन की रुआउ शियोपी ने 15-5 से उन्हें पराजित किया.
0: राइट. और आपको बता दें आज दिन की शुरुआत हुई थी रोइंग की दुनिया से, जहां पर हमें सबसे पहले मेडल्स की अनाउंसमेंट्स आज भारत के एंगल से मिले थे. मेंस डबल्स कल्स फाइनल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था, जहां पर हमारे रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने फिनिश किया था थर्ड स्पॉट पर इन द मेंस डबल्स कल बाय ऑब्वियसली टाइमिंग अ स्कोर ऑफ 6:13.25 टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल, फिनिशिंग जस्ट 3.48 बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट वी जूदी एंड नियर येद ऑफ चाइना. यानी बहुत ही छोटे मार्जिन से हम सिल्वर या स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए शबाब, लेकिन वी स्टिल मैनेज टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ द डे टूडे. सो हियर्स टू आर टू रोअर्स सतनाम सिंह एंड सलमान खान फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन रोअर्स एंड मेकिंग देम फील प्राउड.
1: बहुत सवेरे उन्होंने खुशखबरी सुना दी थी हम लोग को. उधर क्रिकेट प्रेमियों को भी इंतजार था कि मेन्स क्रिकेट शुरू एशियन गेम्स से हो रहा है. तो जी हाँ, उसकी शुरुआत हो गई, उसका पहला मुकाबला भी हो गया और पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता. मेजबान जापान को 48 रनों से उन्होंने पराजित किया. ग्रुप ए के इस मुकाबले में अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे, जवाब में जापान 81 रन ही बना सका.
0: जी और हॉकी में आपको बता दें कि मेंस हॉकी पूल ए एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है. भारत इज अप अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड अच्छी खबर यह है कि यहां पर भी भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है उनकी अपोनेंट साउथ कोरिया के ऊपर, बिकॉज थर्ड क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और भारत बहुत स्ट्रॉन्ग लीड बना लिए. 6-0 से इस समय भारत आगे है. साउथ कोरिया हैज एन अपहिल टास्क टू मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम. भारत की तरफ से शीलानंद लाकरा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, दिलप्रीत सिंह और इन चारों कहना चाहिए हॉकी प्लेयर्स ने भारत के लिए गोल दागे हैं, जिसमें से एक तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था जो हरमनप्रीत सिंह ने करा. सो ऑल इन ऑल अ वेरी कमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग स्टार्ट बाय द इंडियन हॉकी प्लेयर्स अर्ली ऑन अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया. ही इज होपिंग कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम खुशखबरियों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सबके साथ. फिलहाल के लिए शबाब और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत. वी विल ज्वाइन बैक वंस अगेन एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स 2026. Thank you.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और बहुत जल्द हम आपके एक और प्रिय प्रोग्राम की ओर पहुंचेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप, हेलो रेनबो की ओर। और उससे पहले मैसेज भेजा है हुदा बाबा नगर से, कहती हैं हाय प्रीति जी कैसे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो हुदा जी, आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं और हमारे देश में पति को सब कुछ मानते हैं, सिर्फ पति का कहना नहीं मानते हैं। बहुत खूब हुदा जी, आप भी लगता है ज्ञानचंद जी से काफी सारा ज्ञान ले रही हैं। और साथ ही आपने एक प्यारे से गीत की फरमाइश भी की है। चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गीत आप तक पहुंचाने की। और भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं पर समय हो चला है आपके अपने शो हेलो रेनबो का, तो मैं उस और बढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर समझती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत कम समय मिलता है आपसे हमें बात करने का, तो हम उसी और बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैसेज भेजा है मिस्टर जेपी लड्डा ने आलियाबाद से, कहते हैं दुख सबका है बस कहानी सबकी अलग है। क्या बात है, मतलब बहुत छोटे से शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। और आगे कहते हैं कि खबर छुपाई जाती है अफवाह उड़ाई जाती है, खबर छुपाई जाती है अफवाह उड़ाई जाती है। यह वो जमाना है जहां कहानी कुछ और होती है और कुछ और ही सुनाई जाती हैं। क्या बात है, मतलब इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल लाइनें भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथियों। आप भी यदि कोई मैसेज अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को सुनाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। और कशिश ने मैसेज भेजा है, मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है, इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता पर पाने वाला निहाल हो जाता है। वाह वाह वाह, एक से बढ़कर एक मैसेजेस आ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका जुड़ने के लिए। और जल्दी से हम बढ़ते हैं आपके अपने प्रोग्राम हेलो रेनबो की ओर। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप पहुंच गए हैं आपके प्यारे शो हेलो रेनबो में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ज्ञानचंद जी का ज्ञान। एक दिन ना मैंने ज्ञानचंद जी से पूछा कि क्या हुआ ज्ञानचंद जी, आप इतने मायूस क्यों बैठे हैं? तो ज्ञानचंद जी ने कहा कि शादी से पहले

ना ऊपर वाले से मांगा था कि अच्छी पकाने वाली चाहिए, गड़बड़ में खाना बोलना भूल गया था। अब क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, तो जो बात हम दोनों ही जानते हैं वो यहाँ पे कह के कोई औचित्य नहीं बनता है, राइट। और ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी के बीच में इस बात को सुनने के बाद में क्या हुआ होगा वो भी आप जानते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। और वैसे भी खाने का यानी कि जी हाँ भोजन का समय हो चला है, तो शायद आपको भी भोजन करना होगा, करिएगा, पर हमसे अलग होकर नहीं। जी हाँ, तो चलिए हम पहुंच चुके हैं आपके अपने शो हेलो रेनबो में, जहां पर यदि आप हमसे बात करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323-00300, 2323-48-21 या फिर 2970-47-15 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर आपको पहले ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए कि आप जो भी बात करना चाहते हैं कृपया विषय पर ही करें, कोई अन्य बात ना करें, क्योंकि कोई अन्य बात करने का यह मंच नहीं है। और यह भी नम्र निवेदन करूंगी, अब आप सोच रहे हैं कि विषय क्या है वो भी बताऊंगी, उसके पहले नम्र निवेदन करूंगी कि आप अपनी बात कृपया संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। अब आज का विषय है, कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं? गौर कीजिएगा, कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं? बताइएगा हमें आपकी क्या राय है। कॉल करने के लिए नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 2323-00300, 2323-48-21 या फिर 2970-47-15 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विषय मैंने क्यों चुना, बताऊंगी, ये भी बताऊंगी, पर इस प्यारे से गीत के बाद जिसकी फरमाइश की है मेघना जी जुड़ी है हमारे साथ नवी मुंबई से। ओह, नवी मुंबई से न्यूज ऑन एयर ऐप पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वागत है आपका मेघना जी। तो चलिए हम उसी प्यारे से गीत की ओर पहुंचते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा हूँ।
1: बहुत बढ़िया जी
0: आज के विषय पर बोलना चाहूंगा।
1: जी
0: आपने कहा है कि धनवान होकर के मरने के, धनवान
1: लिए
0: होकर के हम मरने के बजाय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज गरीबी में क्यों रहते हैं। आज
1: बिल्कुल
0: आप धनवान हैं तो उसका अपने धन का उपयोग अपने लिए कीजिए। आज आप गरीबी में जिएंगे और अंत में पैसे, इतने सारे पैसे जितने जमा करते हैं उसमें से एक पैसा भी तो आप साथ नहीं ले जा सकते। तो
1: बिल्कुल
0: जब भी आपको जीना होता है अच्छे ढंग से जिए। लेकिन मैंने देखा है कि कई व्यक्तियों को पैसा इकट्ठा करने की आदत होती है।
1: आदत बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आज जो आवश्यक है उस पर वो रुपए खर्च नहीं करते, यहाँ तक के अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं बनाते,
1: कपड़े तो
0: अपने
1: बहुत
0: लिए
1: दूर
0: अच्छे
1: की बात
0: कपड़े।
1: है विलास जी, अपना पेट भी वो मारते हैं, मतलब दो रोटी कम खाएंगे लेकिन पैसा जरूर बचाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कि अपने लिए घर नहीं बनाते, अपने लिए वाहन नहीं खरीदते, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तब भी वो वैद्य के पास नहीं जाते क्योंकि पैसा खर्च
1: पैसा
0: होता है।
1: खर्च हो जाएगा बिल्कुल।
0: और ऐसा मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। मेरे साथ ही एक सज्जन काम करते थे तो उनके साथ ऐसे ही हुआ। उनको
1: ओ
0: रात में कष्ट हुआ, छाती में दर्द हुआ, लेकिन वो विचार किए जाऊंगा तो 500 रुपए डॉक्टर को देने पड़ेंगे, वो नहीं
1: ओ
0: गए और सवेरा उन्होंने नहीं देखा। तो
1: वेरी सैड,
0: ये
1: बहुत
0: मैंने
1: बुरी
0: देखा
1: बात
0: है, बिल्कुल
1: जी।
0: समीप से देखा है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि भोजन में भी, भोजन में
1: कटौती
0: साग
1: करते हैं,
0: सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, पौष्टिक अन्न भी नहीं
1: नहीं
0: खाएंगे।
1: लेंगे
0: केवल
1: बिल्कुल।
0: एक ही दृष्टिकोण होता है, पैसा जितना हो सके जमा
1: बचाओ,
0: करो जमा
1: जमा
0: करो
1: करो,
0: जमा करो।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: अंत में बहुत सारा पैसा तो जमा हो जाता है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए वो स्वयं नहीं रहते,
1: नहीं
0: उनको
1: रहते
0: बुलावा आ
1: हैं,
0: जाता।
1: ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने साझा की विलास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, अब समझे आप कि मैंने क्यों पूछा कि क्या हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं। इस पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
0: राधे राधे सुकुचैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
1: हम तो सुख और चैन से रहेंगे, राधे राधे राधे कहेंगे। मुरली जी बताइए,
0: आप कैसे हैं प्रीति जी?
1: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए, बताइए।
0: एकदम सही बोले हैं आप। हम भी वैसे ही है कि
1: बहुत अच्छी बात,
0: जैसे हम भी आपके धड़कनों में जीते मुरली है हम भी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बताइए।
0: और एक क्या है, इतना बड़ा मैं ऐसे ही क्या, जैसा तो ऐसे राइटिंग तो नहीं करता हूं मैं। छोटी सी बात है, आप आज आप DSO टॉपिक के ऊपर
1: जी
0: सिर्फ
1: बताइए
0: गौर से सुनिए आप बस।
1: जी।
0: खोना, खोना
1: जी
0: और पाना,
1: जी हाँ,
0: खोना और
1: और पाना।
0: पाना, यही जिंदगी का हकीकत है, यही जिंदगी का फसाना है। मगर लोग लोग क्या कर रहे हैं बोलो तो, खोने के जहां मुझे चाहिए, पाना खोने के जाए मेरे को ये चाहिए बोल के जिद पकड़ रहे,
1: जी
0: पाने के जगह ये यही चाहिए बोल के छीन रहे, उसके
1: छीन
0: वास्ते
1: रहे हैं।
0: अमीरी के वास्ते ढूंढते ढूंढते गरीबी में मर रहे वो लोग।
1: बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की मुरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर की ओर बढ़ने से पहले साथियों, मैं आपसे यही नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप केवल अपनी बात साझा करेंगे, किसी पर भी कोई भी आक्षेप नहीं करेंगे, ये आपसे नम्र निवेदन है। फिर हम और भी कुछ कॉलर्स को हमारे पास शामिल करेंगे, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश इस प्यारे से गीत के बाद। स्टे ट्यून्ड।

तो साथियों ये है हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे।

0: शुरुआत कीजिएगा, उसमें बड़ा मजा आता है।
1: हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी, मेरा नाम इकबाल।
0: इकबाल जी हाँ, हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल साहब, स्वागत है आपका जी।
1: देखिए, दौलत आदमी को इस्तेमाल करने के लिए है, उसको बचाएंगे तो फिर इंसान कहीं ना कहीं उसको बचाने के चक्कर में अपनी मिजाज को, अपनी तबीयत को खराब करने के चक्कर में पड़ जाता है। दौलत इतनी को इस्तेमाल करने के लिए और चार को फायदा देने के लिए दौलत, मैं
0: बिल्कुल
1: यही कहता हूँ, दौलत को इंसान अपनी आप को और दूसरे को अच्छे के लिए बायस होने वाली दौलत जमा करना,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: किसी के काम में आ सके और किसी को काम में अपन ले सके, यही जिंदगी की शान है। अल्लाह
0: बहुत अच्छी
1: ताला
0: बात,
1: आदमी को दौलत देता है, आप भी किसी के काम में आओ और आप भी किसी के काम में ले, दौलत
0: बहुत अच्छी बात,
1: को
0: बहुत
1: अच्छे से
0: अच्छी बात
1: इस्तेमाल
0: आपने
1: करना।
0: साझा की।
1: खाली अपने लिए रख ले रहे तो कहीं ना कहीं गलत बायस होती,
0: अच्छा, अपने
1: पहले
0: लिए भी
1: अपनी
0: कहाँ रख रहे हैं ये भी तो बताइए ना इकबाल साहब, अपने लिए भी कहाँ रखते हैं? हम अपने शौक, अपने सपनों को मार कर जीते हैं, चार पैसे बच जाए तो आगे काम आएंगे, यही हम सोचते हैं, और वो आगे कभी आता ही नहीं है जहाँ पे हम
1: नहीं,
0: उसका उपयोग कर
1: अपने
0: सकें।
1: लिए जो रख रहे हैं ना, वो दूसरे को जब इस्तेमाल दे रहे हैं तो वो जो अपने लिए ही है वो दौलत, दूसरे की जो खुशी मिलती है वही
0: वो
1: अपनी
0: अपनी
1: दौलत है।
0: दौलत है। बहुत अच्छी बात, मतलब इन शॉर्ट आपने जो है वो कहते हैं ना कि नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की देख गया, वो वाली बात आपने बता दी कि वो खुशी ही हमारी असली दौलत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक प्यारा सा मैसेज भेजा है हुदा जी ने, कहती हैं कि अमीरी से मरने से अच्छा है आज को खुलकर जिए, हर दिन आखिरी समझ कर जिए, खुश रहने के लिए वजह नहीं देखिए, हर दिन खुश रहा करिए। बहुत सही, बहुत सही। और एक बहुत अच्छी आगे बात उन्होंने बताई है, कहती हैं कि सैलरी अगर रिश्तेदार को कम बताओ तो इज्जत नहीं देंगे, अगर ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। तो अब बंदा करे तो क्या करे, इज्जत बचाए या पैसा। बहुत अच्छी बात। और एक प्यारा सा मैसेज विलास जी ने भी भेजा है, कहते हैं कि प्रतिदिन मंदिर जाना उत्तम है, प्रतिदिन जप करना उत्तम है, प्रतिदिन गीता पढ़ना उत्तम है, परंतु अपने अंदर झांक कर देखना सर्वोत्तम है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। विलास जी पेनुरकर, नलाकुंटा, भाग्यनगर। एक और अपने कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
2: हेलो, नमस्ते प्रीति।
0: नमस्कार, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है, आप कृपया सिग्नल में आके बात करें, और
2: हाँ
0: फोन आपका इको हो रहा है तो आप थोड़ा सा रेडियो से बाजू हटकर बात करें।
2: हाँ जी,
0: हाँ जी
2: हट गई रेडियो से, हट
0: हाँ
2: गई।
0: जी हाँ जी, बताइए।
2: कैसे है प्रीति?
0: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामनाएं, और क्या चाहिए बताइए अच्छी जिंदगी के लिए।
2: हेलो
0: हाँ जी, हेलो,
2: प्रीति।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: हेलो हेलो, आ रही आवाज? आ रही,
0: अब आ रही है, बताइए।
2: तो अब जो अमीरी की गरीबी की बात करे, इंसान अपने औकात भूल गया, सिर्फ कमाई का देख रहा,
0: बिल्कुल
2: क्या औकात देख रहा, हमको कमाई कहाँ ले जाती, हमको सब कमा के कहाँ ले जाती, कहाँ छोड़ती, वो नहीं देख रहा,
0: वो
2: सिर्फ
0: नहीं
2: कमा,
0: देख
2: सिर्फ
0: रहा है।
2: कमाई के पीछे सिर्फ दौड़ रहा, दौड़ रहा, दुनिया के पीछे दौड़ रहा, बस यही है इंसान का हाल।
0: पर पता नहीं है कि किस लिए
2: नहीं
0: दौड़
2: है
0: रहा है, और दौड़कर जो
2: दौड़ रहा है।
0: कमाएगा वो करेगा क्या। ये बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और साथियों, यहाँ पर हम रुकते हैं, एक अहम जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं, और पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। हेलो डियर लिसनर्स, माना लाइफ लो।
3: खुशखबरी ये है कि भारत ने मेंस हॉकी में मजबूत टीम मानी जाने वाली इस ग्रुप की साउथ कोरिया को बड़े आराम से 8-2 से पराजित कर दिया है। और इस टूर्नामेंट में पूरे, अगर कहा जाए एशियन गेम्स के इतिहास में, ये अब तक साउथ कोरिया पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। एशियन गेम्स में इससे बड़ी जीत भारत ने अब तक हासिल नहीं की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मुकाबले हुए थे, अपेक्षाकृत आसान टीमों के विरुद्ध भारत बहुत बड़े अंतर से जीता था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि असल परीक्षा तो कोरिया के साथ होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि कितनी तैयारी के साथ आए हैं अपने खिताब की रक्षा करने के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि टीम इंडिया ने पूल ए में यह लगातार तीसरी जीत हासिल की, और जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में वो चोटी पर है।
4: जी, और थोड़ी सी आपको खबर एक और देते हैं बॉक्सिंग की दुनिया से, जहां मेरे पास ज्यादा खुशखबरी वाली न्यूज तो नहीं है, लेकिन वेल इट्स एन अपडेट दैट वी हैव टू गिव यू कि बॉक्सिंग में सुमित किंदू का जो मुकाबला था 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 में, वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम, वो फिलहाल उनको उनसे फॉरफीट कर लिया गया. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सुमित की जब शुरुआत हुई थी उस मुकाबले में, ही लैंडेड बिग पंचेस अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर

0: dominance over the Iraqi pugilist, the Indian boxer took the first round 5-0 and उसके बाद सेकेंड राउंड भी स्प्लिट डिसीजन से भारतीय बॉक्सर सुमित कुंदू के ही फेवर में गया था विद द डिसीजन ऑफ 3-2 बट डिजास्टर स्ट्रक जस्ट सेकेंड्स इनटू द थर्ड राउंड एज सुमित सफर्ड अ सीवियर नी इंजरी स्लिपिंग एंड हॉबलिंग बिफोर द मेडिकल ऑफिसर स्टेप्ड इन टू स्टॉप द बाउट वेल द ऑफिशियल सस्पेक्टेड एन ACL इंजरी ब्रिंगिंग अ हार्ट ब्रेकिंगली अब्रप्ट एंड टू हिज कैंपेन एंड एज अ रिजल्ट इट कुडंट हैव बीन मच मोर वर्स फॉर द इंडियन बॉक्सर सुमित कुंदू बिकॉज इराक्स Ali Al-Saray advanced to the quarterfinals automatically.
1: Yes, actually, एक रोइंग से खबर आ रही है बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन अपने श्रोताओं को अपडेट देना बहुत जरूरी है भारत के कुलविंदर सिंह नवदीप सिंह जकार खान और बलराज पवार की टीम पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स के जो फाइनल मुकाबले थे उसमें पांचवें स्थान पर रही हालांकि प्रयास बहुत अच्छा किया था उन्होंने लेकिन सफलता ज्यादा मिली नहीं चीन ने इस मुकाबले का गोल्ड मेडल जीता इंडोनेशिया दूसरे उज्बेकिस्तान तीसरे और जापान चौथे स्थान पर आए
0: जी और स्विमिंग में भी नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टू गिव एट दिस आवर बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी विटनेस्ड एक्शन इन मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स मेंस 4x200 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स एंड मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल इन तीनों इवेंट्स में एक एक करके आपको बताते हैं मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में भारत के तरफ से बेनेडिक्टन बेनिस्टन फिनिश्ड फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल डायरेक्टली बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल मेंस 4x200 मीटर 100 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स के अंदर बेनेडिक्शन बेनिस्टन अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वो एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर सिक्स टीम रेस इवेंट मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8 मिनट 2.52 सेकंड्स टचिंग द वॉल 5.13 सेकंड्स बिहाइंड वियतनाम्स ग्युइन होय हुआंग एज अ रिजल्ट आर्यन नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट ऑल्सो
1: क्या बिल्कुल और स्क्वैश में भी आज का दिन अच्छा रहा है आज इस मुकाबले भी शुरू हुए तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेन सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई उन्होंने सिंगापुर की वेई रहन को 3-1 से हराया और मेन सिंगल्स में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई और चोत्रानी ने अगर देखा जाए तो मलेशिया के संजय जीवा को 2-1 से हराया उन्हें हार का सामना करना पड़ा इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया था और उन्होंने सिंगापुर की ओ यी योंग वाई इयान को 3-0 से हराया था तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4 11-5 11-7 से जीता था तो आज जो कुछ अच्छे मुकाबले भारत के लिए हुए हैं उसमें स्क्वैश भी शामिल है
0: ऑफ कोर्स इनफैक्ट शायद इकलौता ऐसा कह सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द डे में स्क्वैश हमें गुड न्यूज लेके आया है बिकॉज वुशु से भी हमें गुड न्यूज मिली ही मिली है लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रोशिबिना देवी गॉट अस द कोवेटेड सिल्वर इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी इन वुशु एंड थेरबाय शी वाज एबल टू स्कोर अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स इन 3 एशियन गेम्स 2018, 2022 और 2026 तीनों बार उन्होंने मेडल्स अपने नाम किए अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स कमिंग फॉर रोशिबिना देवी एंड आई थिंक शबाब वी आल्सो हैव सम न्यूज़ टू शेयर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग फॉर आवर लिसनर्स टुडे
1: या बिल्कुल और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई भवानी देवी ने थोड़ा सा निराश किया राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर रही है क्योंकि उन्होंने 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हराया था और उसके बाद से मुकाबले से बाहर होना थोड़ा चिंता की बात है
0: राइट विल कैरी ऑन विद दीज अपडेट्स ऑफ कोर्स लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज दिन की शुरुआत भी मेडल्स के साथ ही हमारे लिए हुई थी बट विल बी कमिंग विद दैट जिसकी वजह से भारत की पोजीशन अगर मेडल टेबल पर देखिए तो 14th पोजीशन पर अब बन गई है 15 मेडल्स कुल मिला के भारत को मिले जिसमें से एक है गोल्ड क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट ने दिलवाया 6 सिल्वर है जिसमें 4 शूटिंग 8 वेट लिफ्टिंग और 1 वुशु से आया है और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स 4 शूटिंग से 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से 1 सॉफ्ट टेनिस से 1 बैडमिंटन और 1 रोइंग मेकिंग इट अ टोटल of 15 medals hope still resting a lot on the Indian athletes aur isi ummeed ke sath ki bhartiya athletes aur players bharat ka naam aur roshan karwaye aur medal table mein dheeme dheeme karke bharat aur upar aaye on that note right now it's shabab and me sakshi saying goodbye to our listeners we'll join back at 3:30 pm with all the live updates of the ongoing asian games 2026
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: FM रेनबो 101.9।
5: हेलो डियर लिसनर्स, మన లైఫ్ లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు. మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు. ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.
4: FM Rainbow 101.9.
6: और साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं। ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा साथियों, क्योंकि आज हम अपने शौक अपने सपनों को मार कर जीते हैं। चार पैसे बच जाए तो आगे काम आएंगे ये हम सोचते हैं और आगे भी ऐसे ही करते हैं, तो वो बचाया हुआ जो पैसा है वो आखिर काम कब आएगा? और फिर एक दिन हम इस दुनिया से विदा ले लेंगे और पीछे लोग बोलेंगे कि हम कितनी दौलत छोड़कर गए हैं। फिर हो सकता है कि शाही रूप से हमारी अंतिम यात्रा निकले, चंदन की लकड़ी, घी आदि जलाए जाएंगे, पर क्या अर्थ है? ये सब देखने के लिए हम थोड़े ही होंगे। तो चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है और उसके बाद में हम मैसेजेस की ओर जाएंगे। हेलो रेनबो।
7: हेलो कृति,
6: नमस्कार। नमस्कार, कौन बात कर रहे
7: हैं? शिवा बात कर रहा हूं।
6: शिवाजी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
7: अच्छी हूँ जी। होप यू आर आल्सो फाइन, आवर ऑडियंस आल्सो फाइन।
6: वेरी मच फाइन आफ्टर लिसनिंग टू यू सर, प्लीज टेल मी।
7: तो टॉपिक है ना, आपने हिंदी में बोला, मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया, पार्डन। इफ यू कैन एक्सप्लेन, मेरे को थोड़ा बता सकते कि
6: ओके, मैंने पूछा है कि कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं। हम आज हम बस कमाने के लिए भाग रहे हैं कि अभी पैसा चाहिए, पर हम उसका उपयोग कब करेंगे, उस पैसे का उपभोग कब करेंगे?
7: सही समझा। वी आर रनिंग द रैट रेस लाइक इन टुवर्ड्स गेटिंग द मनी, मोर मनी एंड नॉट लिविंग पीसफुली।
6: एग्जैक्टली,
7: या एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम एंड thanks for choosing this topic.
6: But why we are doing that?
7: Yeah, so like everybody set a standard, like nobody want to live
6: okay, everybody has set the standard. Yeah. So does the standard has any end? No, has any end?
7: No, it is ambiguous.
6: Sky is the limit for that.
7: And nobody has a, you know, if you ask anybody in the city or urban area, you are living your life satisfied. Everyone's just like,
6: so basically no one is satisfied. Neither.
7: No. Radio one.
6: Shivaji, basically no one is satisfied in that case.
7: Yeah.
6: Exactly.
7: No one is satisfied.
6: थैंक यू शिवाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। मैसेज भेजा है कोटी से अश्विन जी ने, कहते हैं सभी को जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मैसेज भेजा है, चलिए हम वो मैसेज थोड़ा सा लंबा है शामिल करेंगे, पर फिलहाल एक और मैसेज भेजा है हमारे पास अशोक जी ने। अशोक जी कहते हैं कि ये दोस्ती चिराग है जिससे जलाए रखना, यह दोस्ती चिराग है इसे जलाए रखना, यह दोस्ती गुल है इसे खिलाए रखना, हम रहे ना रहे इस जहां में बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने साझा की। और चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो रेनबो। लगता है इन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अगर मेरी आवाज नहीं पसंद आई है तो आप दूसरी आवाज भी सुन सकते हैं। चलिए, लगता है इन्होंने अपना कॉल भी कट कर दिया है। कोई बात नहीं साथियों, मैंने आपसे जो पूछा है उसका एक कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। हेलो रेनबो।
8: हेलो प्रीति जिंटा जी।
6: नमस्कार नमस्कार, मैं प्रीति जिंटा नहीं, प्रीति झंवर हूँ, ओलेटी प्रभाकर राव जी, बताइए।
8: कैसी है आप?
6: आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं साहब, बताइए।
8: वेरी गुड। तो दुनिया के अंदर गरीब कोई भी नहीं है।
6: दुनिया के अंदर गरीब कोई भी नहीं है, ठीक है, पर जीते तो सभी गरीबी से ही है।
8: अमीर ही से, कैसा अमीर बोले तो, मरने के टाइम पे चार आदमी आते ना पीछे पकड़ के, वो अमीर है।
6: वो अमीर है,
8: वो वही छे अमीर।
6: ओके, क्योंकि उनके
8: कोई,
6: क्योंकि उनके क्यों कंधे पे तो? पांचवा है इसलिए, राइट।
8: क्यों बोले तो, हेलो,
6: हाँ जी हाँ जी बताइए।
8: अब दुनिया में के अंदर देख रहे, परसों नेपाल में देखे, माँ कौन है, बाप कौन है, बेटा कौन है, ऐसा हो गया।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
8: ना, इसीलिए मरे से टाइम पे चार आदमी आए तो वो ही है अमीर।
6: बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए प्रभाकर राव जी, बहुत अच्छी बात। और चलिए, जैसे मैं आपको बताया कि अश्विन जी ने मैसेज भेजा है, कहते हैं, वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर पेजवा जीव को मारकर खाता है, छोड़ देते हैं भोज, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। चलिए खैर, ये सब बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे अश्विन जी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना जो है एक फूड स्टैंडर्ड है। और आगे वे लिखते हैं कि एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। और एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। बहुत सही कहा। और जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, केवल फूल वाले की दुकान ही ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और साथ ही कहते हैं कि सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार लगाएं या आशाओं के अंबार, परंतु सुख का ताता केवल और केवल सृष्टि की चाबी से ही खुलता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और एक और प्यारा सा मैसेज भेजा है मंगला जी ने, जो कहती हैं कि जो मन को शांत और सम रखता है उसका जीना ही जीना है, जो कभी तनाव नहीं रखता उसका जीना ही जीना है, जो रोज सवेरे योग करता है उसका जीना ही जीना है। मिलते हैं लाभ अलाभ कभी, मिलते हैं हर्ष विषाद कभी, समता से निज पद पर बढ़ता उसका जीना ही जीना है। बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगला जी। तो साथियों, यहाँ पर एक प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ और कॉलर से हम जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: రెయిన్బో 101.9. హలో లిసనర్స్, ఆర్ యూ సమ్వన్ హూ లవ్స్ గెటింగ్ లాస్ట్ ఇన్ ద పేజెస్ ఆఫ్ అ గుడ్ బుక్ అండ్ విషెస్ అదర్స్ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ జాయ్ దట్ యూ ఫౌండ్ బిట్వీన్ దోస్ పేజెస్? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader. FM Rainbow 101.9.
1: साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि कहीं अमीरी से मरने के लिए हम गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं। साथियों, एक बार ना कुछ समय पहले की बात आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे, तभी वहां पर एक शव आया, एक डेड बॉडी आई। उनके अंतिम संस्कार का ठाट बाट देखकर मतलब मेरा कौतूलवश मैंने उनसे किसी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो परिवार से जवाब मिला कि ये बहुत बड़े रईस हैं, मतलब दुबई में काफ़ी बड़ा नाम है इनका एंड ऑल। चलिए, मतलब काफ़ी रईस, ये समझ के चलिए कि लगभग जो है 3/4 दुबई इनकी है। तो सुनकर मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। ये सुनकर मैं हैरान होकर सोचने लगी कि जिस इंसान की सल्तनत इतनी बड़ी थी, 3/4 दुबई का जो मालिक था, आज उसे जलने के लिए वहाँ पर पंडित जी पूछते हैं कि 500

0: या 6,000, 5,000 या 7,000, तो मैंने पूछा ये 5,000 और 7,000 क्या है, मतलब जैसे मुझे कन्फ्यूजन है वैसे उनके परिवार वालों को भी हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि 5,000 में जो है साधारण लकड़ी रहेगी और जो है नॉर्मल सा ये रहेगा, और 7,000 में जो है घी और चंदन का चोरा उसमें डाला जाएगा। तो सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा दोस्तों कि जब हम जा रहे हैं इतनी बड़ी सल्तनत, या कोई भी मतलब इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक या रहे चाहे कोई, हमें से ही कोई क्यों ना रहे, मतलब जलने के लिए मात्र 5,000 रुपये या 7,000 रुपये और 6 फीट की जमीन नसीब हुई। इंसान जिंदगी भर कितना भी कमा ले, आखिर सच यही श्मशान है। और इसीलिए मैंने आज आपसे यह विषय पूछा कि कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं, यही मेरा औचित्य था साथियों। और जैसे आपने बताया कि शायद काफी सारे लोगों को विषय भी नहीं समझ में आया होगा, पर खैर कोई बात नहीं, मेरा कहने का औचित्य यही था। एक और कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून प्रीति जी।
0: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद अफजल गोलकुंडा फोर्ट से बोल रहा हूँ।
0: गोलकोंडा फोर्ट से अफजल साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है मैडम।
0: जी बताइए।
1: मेरे को एक दोहा याद आ रहा है मैडम।
0: जी बताइए।
1: साईं इतना दीजियो जामे
0: जामे
1: कुटुम
0: कुटुम
1: समाए,
0: समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
1: भूखा जाए, बस इतने देना चाहिए, इतना ही छोड़ना अपने को।
0: बिल्कुल
1: हम सबको इतना है, हम भी भूखे ना रहे, हमारी परिवार भी भूखा ना रहे, कोई आने वाला अगर है तो
0: अतिथि हैं वो भी भूखा ना रहे, बस।
1: बस वो भी भूखा ना रहे। दौलत होना तो अपने को ईमान की दौलत साथ ले जाना है,
0: बहुत सही बात।
1: और तालीम की दौलत जो है बांटने से बढ़ती है, तालीम हासिल करना चाहिए वो बांटने से बढ़ती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, तालीम
1: और
0: बांटने से
1: हुनर,
0: बढ़ती है।
1: हाँ उन हुनर हासिल करना चाहिए जो दूसरों को सिखा सके और वो अपना रोजगार आप कमा सके। ये
0: बहुत
1: चीजें
0: सही
1: अगर
0: बात,
1: लोग हम बांट के बीच बांटेंगे तो ये उनके सब पास बाकी रहेंगी। दौलत
0: बिल्कुल
1: अगर किसी को देंगे 5,000 10,000 देंगे तो वो खर्चा हो जाएंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही
1: हाँ
0: बात,
1: इल्म
0: बहुत
1: और हुनर उनके साथ रहेगा।
0: साथ रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अफजल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये थे अफजल साहब, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये हमारा आज का आखिरी कॉल रहेगा। हेलो रेनबो
2: हाँ प्रीति जी,
0: जी।
2: आप मणिकर्णिका घाट पे वो कास्ट जला,
0: जी
2: मतलब
0: जी
2: वो जमीन 6 फुट का, तो वो जले जिस शिव का तो नहीं हो सकता, दोबारा उस पे दूसरा जीवन
0: दूसरी
2: पाने की
0: जलेगी,
2: चेष्टा,
0: बिल्कुल। पर हमें नसीब तो बात
2: दूसरे
0: उतनी
2: पे
0: ही
2: तो
0: जगह
2: जीवन
0: हुई
2: नहीं पाने
0: ना,
2: की
0: मैंने
2: हो।
0: इसीलिए देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है मुरली जी, वो 6 फीट
2: हाँ
0: जमीन छोड़ के कुछ भी हमारा नहीं है, पंच तत्व का शरीर तो पंच तत्व में ही मिल जाएगा, तो हमारा है क्या उसमें,
2: नहीं, अब अपना तो कुछ भी नहीं
0: कुछ भी
2: है
0: नहीं है।
2: प्रीति जी, वही है जो अपन यही चाहिए बोल के जो जिद पकड़ते ना,
0: बिल्कुल वो
2: उससे
0: ही,
2: बड़ा गरीबी कुछ नहीं है
0: बिल्कुल
2: मेरे
0: बिल्कुल
2: हिसाब
0: सही कहा मुरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों फिलहाल मैसेजेस की ओर बढ़ती हूँ। मैसेज भेजा है अक्का, नमस्ते, हैप्पी एंड सेफ्टी गणेश, इमरजन निमर्जन, ओके, अर्निका चंदू। एंड मैसेज भेजा है वैष्णवी जी ने, वैष्णवी जी क्या कह रही हैं, सत्य डेबिट कार्ड की तरह है, पहले कीमत चुकाओ बाद में आनंद पाओ, और झूठ क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लो और फिर भुगतान करो। वैष्णवी जी पेंडुलकर मैसेज भेजती है, बहुत अच्छा मैसेज आपने भेजा। और साथियों हम जिनका कॉल ले पाए वो तो ठीक है, पर जिनका कॉल हम नहीं ले पाए उनके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनका कॉल नहीं ले पाई, पर फिर भी कोशिश करूंगी कि पुनः कभी आपसे यदि बात हो तो हम आपका कॉल जरूर ले। और हमने आज आपसे यही पूछा था कि कहीं हम अमीरी से मरने के लिए गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं, तो हम आपसे यही नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हम पीछे कितनी ही दौलत छोड़कर क्यों ना जाए, ठीक है आप छोड़िएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है कि आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे में नहीं, मेरा कहने का औचित्य नहीं है, पर हम अपने सपने अपने शौक जिन्हें हम मार मार कर जीते हैं कृपया वो ना करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि हम कब तक रहेंगे। इसीलिए तो चलिए फिलहाल मैं आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति इसी वादे के साथ विदा लेती हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे और हमारे अगले आरजे हमारे साथ शो करने के लिए रेडी हैं। मुरली जी हमारे साथ,
3: वेंकी आ गया।
0: वेंकी आ गया, क्या बात है। अच्छा मैं यही देखना चाह रही थी कि मैं आपका नाम अगर गलत बोलूं तो आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यही मुझे देखना था। तो वेंकी जी क्या कह रहे हैं आप?
3: करने का क्या है, कहने का क्या है, आप तो पूरा कह दिए, मगर वेंकी तो आपके साथ जुड़ते हैं अब तो, जैसनी हैदराबाद बोल के, और उसके साथ ही डबल का मीटा लेटेस्ट फिल्म अपडेट्स भी लेके गया है और ताजा ट्यून्स भी लेके आए, सुपर सुपर आइटम्स आज आपके लिए लाए।
0: आपके मुंह से डबल का मीठा सुन के मुझे बहुत

0: जागते रहो जागते रहो।
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:03 అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: ఇండియన్ ఆర్మీ ఆర్టిల్లరీ మే అప్నీ సేవాయి దీ. వో హెలికాప్టర్ పైలట్ రహే ఔర్ అన్గినత్ మిషన్స్ కే దౌరాన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కియే. దేశ్ ఔర్ సాథీ జవానో కీ సురక్షా మే జాన్ కీ బాజీ లగా దీ. ఉస్కే బాద్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మే డిప్యూటీ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ కే రూప్ మే ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ సంభాలా. ఆఫ్సెట్ పాలిసీ 2006 కే రచనాకార్ రహే. ఉన్హోనే నెక్స్టర్ ఫ్రాన్స్ और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज का हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में.
2: जय हिंद. थैंक यू ऑल द लिसनर्स. थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटिफुल शो टुडे.
1: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए. बहुत बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू.
1: तो सर हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा. इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा. आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं. तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम.
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था. तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर. हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पे ध्यान दो. फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया. तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहां भी काम किया काफी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो जॉब कर सकते थे. माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें.
1: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसे हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
2: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था. मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव्स बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था. डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एनवायरनमेंट विजावी आउटसाइड जो मैं देखता था. जैसे जो मुझे तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर ली है. फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहां पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है. तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूं. फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था, और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना.
1: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है. तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
2: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा. फ्लाइंग से आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में. उसमें मुझे मौका मिला काफी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए. तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था. फिर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले. फ्लाइंग में फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं. बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का. सियाचिन ग्लेशियर

0: 102.6 एशिया नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की ट्रेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था, हेलीकॉप्टर पायलट जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए ट्रेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे तो डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया। पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60 मैंने इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहां पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर, उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 to 5:30 हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
0: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
1: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग कर रहा है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर

0: आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का, कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे, किस ताकि जो पायलट ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाडन में कहीं कोई वो होता है, क्रैश होता है, तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू करते हैं, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
1: क्या बात है सर,
0: ये ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहां सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे जहां हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है,
0: इनकार कर देता है फ्लाई की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा।
0: वो के बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करे हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट, तो एच क्या करते हैं बाहर निकल के, एच को पेंट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी। तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है। तो एक बारी आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो एयर बस्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है,
0: कुछ सेकंड मिलते थे। हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
1: अच्छा।
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना, एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो मतलब हमको इमीडिएटली वापस।
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है।
0: हाँ।
1: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स भी होते थे, मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था, कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं।
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस एम्यूनिशन
1: है, कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली एवरी डे।
1: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूँ सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा कैरियर रहा है, ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश और जुनून से भरा हुआ। सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं।
1: क्या बात,
0: कभी भी नहीं।
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डैरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूं, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो जितना होना हो रहा है, हमारे को मेंटली बहुत टफ बनाया जाता है। अब कोई भी ऑफिसर मेरे को, तो मैं तो फॉर्चुनेट था मैं वहां पर था, मेरी जगह और भी भाई पायलट है मेरे फ्रेंड जिनको सीएचए में नहीं फ्लाइंग करने का मौका मिला।
1: अच्छा।
0: वो भी अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया।
1: क्या बात है सर, मतलब सबकी एक ही मेंटालिटी होती है, एक सोच। और सर जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से देश सेवा से भरपूर, और जो एक होता है ना कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए आप, तो जनता से भी आप कुछ, जैसे एक एक सोल्जर है तो वो चाहता है कि उसको भी तो वो एप्रिसिएशन और वो जो है ना वो प्यार मिलना चाहिए।
0: देखो मिलता है, अब आप जब जनता देखती है कि हमारे जनता को कब पता चलता है, जब से

0: कारगिल जैसी लड़ाई होती है,
1: जी
0: जैसे सिंधूर जैसी लड़ाई होती है, ऑप्शन दूर होता है, तब कोई
1: जी
0: लगता है कि कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो
1: जी
0: बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं, तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता
0: अब
1: है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत।
0: सर
1: तो सर, हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं। या
0: आपकी
1: फिर
0: मर्जी, आपकी
1: सर,
0: मर्जी।
1: मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है। उसके
0: शुक्रिया,
1: अलावा
0: खुशी।
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं, जो जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून आता है,
1: अच्छा
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को,
1: ओके,
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसी फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग
1: नहीं फ्लाई कर सकता। जी ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर, जय हिंद सर। इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच सौम्या,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है, जय हिंद। ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6, सैल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर।
1: और ये है विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
0: थैंक यू वेरी विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी जी,
0: तो ये थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी, ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाता
1: है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन्होंने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं,
1: आर्मी पायलट की। जी जी जी, एयरफोर्स की नहीं।
0: हाँ जी, नहीं नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स, एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ
1: जी जी, तो सर सभी को IMS ही होना कराना?
0: नहीं ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले NDA होता है, कोई NDA के बाद हम 3 आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर।
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
1: जी,
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, अगर एयरफोर्स में अगर NDA में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हैं तो चले जाएंगे।
1: राइट सर। सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास, अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुरापल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का, और यहां पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपके

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रयाम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था, तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: बल्कि बताऊं, अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में, तो हमें पता चला एक गन पोजीशन थी जिसपे एवलॉन्च आ गया था, तो वहां के 14 सोल्जर्स उनके नीचे उसमें चपेट में आ गए, तो हमको बोला गया कि वहां पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर, तो वहां पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे हुए थे साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर के वॉटर रिमेन्स मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली, तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं, हम

0: एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि बॉटल रिमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि
1: जी
0: उनके अच्छे से लास्ट राइट्स हो सके।
1: राइट
0: जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात
1: जी
0: किया ना,
1: जी
0: मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में। और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था।
1: जी
0: जब हम लैंड कर रहे थे जहां पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए,
1: जी
0: फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो
0: टचिंग।
1: आपके साथी सिपाही जो
0: हाँ
1: जवान थे
0: बिल्कुल,
1: जब वो शहीद हो गए, तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
0: एब्सोल्युटली।
1: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी
0: हाँ जी,
1: और शहीद हुए। सर, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझें हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
0: शायद मैं इस जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था। मुझे पता है ज्यादा हम लोगों के पास टाइम अब भी नहीं है, बेशक
1: जी
0: आधे घंटे से ज्यादा। मैं कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है,
1: जी
0: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है।
1: ओके,
0: हम सीएचएन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाई, डॉक्टर्स बैठे। तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 1998 की बात कर रहा हूं, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूं, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए, वो लोग पीछे चले गए। हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी। तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कैप्टन सौरभ कालिया
1: जी,
0: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया गया, मतलब मारे गए थे बेचारे। और सेक्टर्स में भी हमको बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई। तब हमें पता चला मार्च 99 में कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए। हमारी 6 गन्स सीएचएन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी, रेजिमेंट हेडक्वार्टर प्लस 6 गनों को, और बोला गया आप जल्दी से जाइए। पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
1: जी। तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप।
0: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9,200 गोले फायर किए थे हमने। हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफोर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी, जैसे मैंने आपको बताया 6 गने हमारी सियाचिन में थी और 6 गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल 2 साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किए, ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड जाके। तो हमने लगातार फायरिंग किया।
1: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे वो भी अपने आप में, जैसे आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में। और एक चीज और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर द रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या है?
0: मैं बताता हूं, ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूं। तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी

0: झुलीला पास 15-15-16 फीट बर्फ थी, हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी, फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इनटू द कारगिल। जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके आपको बताया ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए। हम लोग सब हैरान हो गए, उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था।
1: अच्छा,
0: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर गोल्ड हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं।
1: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
0: हमारी
1: हिल्स, उनको रेड हिल्स का नाम दिया गया।
0: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया थी, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया और पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी,
1: एनिमी
0: और ब्लू मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग रेड।
1: सर, वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
0: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारी रोड्स को देखती थी, मतलब रोड देख रही थी और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए, उन गन्स को बिना आवाज किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
1: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता
0: होता था, वो फायर करते थे।
1: अच्छा,
0: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, या छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था। और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और बोफोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई। तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
1: अच्छा,
0: और जहां से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया। और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस मिली।
1: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाले।
0: शायद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
1: जी
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था, इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता। तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह। हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके। हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहां इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल के अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ, क्या सक्सेस सिग्नल हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे। अच्छा, आपको सक्सेस मिला है कि नहीं
1: जी।
0: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे,
1: एवरी डे। और सर ये लगातार बहुत दिन
0: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा।
1: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था, सिपाहियों का,
0: बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई।
1: तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे, जैसे परिवार से तो बिल जाहिर याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
0: ऐसा हमारे को ना हफ्ते में एक बार फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है,
1: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
0: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता है, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते। हमारी फैमिली तो सारी बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, शायद शायद कुछ खबर आ जाए, तो मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोड़ा फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बार बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे माँ बाप आवाज, फैमिली सुन लेते, को अच्छा लगता। इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है।

0: पूरा देश, ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता है, टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई। तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए, अच्छी अच्छी चीजें। पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का, वहां पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा।
1: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए।
0: बहुत मोटिवेशन। मतलब हर छुट्टी तो सबकी कैंसिल,
1: तो कैंसिल सब।
0: मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है। एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, की कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जा रहा। कहते सब मजाक कर रहे हैं, तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में। कहते बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई। कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया। चार पांच गया था 15 दिन के लिए। अच्छा। चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर। हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया। कहता साहब मैं गांव पहुंचा, बहुत जूते पड़े मेरे को, मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे। कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश, और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़।
1: क्या बात है सर, क्या बात है।
0: और मेरे साथ हुआ शाह जी, मेरे साथ हुआ है सर। मिसिस चोना मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी, आरकेपुरम की, उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी। मिसेस चोला ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
1: सर ये है, मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
0: पूरा देश आपके साथ खड़ा,
1: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
0: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
1: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है। मुझे था ये जहन में क्या है, मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: 106.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं। जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी।
1: हाँ, बिल्कुल है। मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया। अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। अच्छा। एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया, बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOC-NC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज्यादा, तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफी अच्छे काम किया। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड

0: की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफी काम किया 5 साल का। बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला, उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी आर्मी छोड़ने की।
1: अच्छा।
0: दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे, तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया।
1: आपने फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीजों में भी, तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था।
0: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जो मेरे जॉब खत्म करने के बाद मैं अपने, तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए, तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला, जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया, कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग, किसी को तो आगे आना था, तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, गेट्स को मैनेज करना। और कोविड ऐसी चीज थी, आदमी हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी। तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी। हमारी कॉलोनी में हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैप लगाया, मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को, कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज की भी जरूरत होती है, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे। तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम में RW में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊं। तो
1: सर उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
0: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूं तो मैं जुड़ा, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊं।
1: लेकिन सर आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो, तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी, किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे तब, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
0: मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे 3 बच्चे लड़के हैं, मतलब 3 बच्चे हैं, अंकित, शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है, और मेरी डॉटर रिलोदृशिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है लोगों।
1: बिल्कुल सर,
0: आई एम क्वाइट अ ब्लेस्ड मैन।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो यहाँ पर सर मैं अभी, तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर कर दूं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
0: He can join every branch. If as an engineer, he can join as a technical. When he comes, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that.
1: Okay.
0: And as an engineer, he can join that branch, technical branch.
1: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।
1: और ये है कर्नल रिंदा, इज वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स। विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर FM. आई एम ऑनलाइन, थैंक्स।
0: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
1: कॉलन नंदा, वाह वाह कॉलन नंदा, ग्रेट ऑफ यू,
0: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
1: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में,
0: तारीफ क्या था, आप उसका प्यार है सबका ही।
1: बिल्कुल सर। ये सर है डॉक्टर दीपक जोशी। सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
0: हाँ सब श्रद्धा जी।
1: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सल्यूट, और देशहित न रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सल्यूट करता हूं मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद।
0: तो सरावद साहब थैंक यू
1: जी, ये आपको सल्यूट करते हैं और कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ के रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का

0: श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं फिर उसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना, रायबरेली।
1: थैंक यू।
0: तो सर ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में। और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर चलते चलते।
1: थैंक यू।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर।
1: थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक।
0: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू।

0: and every evening from 8 to 9, FM Rainbow 101.9 Speaks Telangana. This is Telangana, your dedicated hour for Telangana's history, art, culture, literature and tourism. Celebrate the land, celebrate the people and celebrate the pride. Telangana, where Telangana lives on radio.
1: స్టూడియో క్లాక్లో సమయం 5:30 కావస్తుంది. ఇప్పుడు వినండి పీరియాడిక్ ఎఫ్ఎం అప్డేట్స్. 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 టు బి హెల్డ్ ఇన్ జపాన్.
2: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 కి అప్డేట్ కా.
3: దిస్ ఇస్ ఢిల్లీ.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं शबाब अनवर. हम लेकर आ गए आपके लिए शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स. और आपको बता दें कि आज के दिन के एथलेटिक्स के इवेंट्स की फाइनली शुरुआत हो चुकी है. जी हाँ, दीज इवेंट स्टार्टेड ऑफ विद द मेन्स 100 मीटर्स इन विच अनिमेश खजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स. अनिमेश खजूर फिनिश थर्ड इन heat and clocked 10.36 seconds to finish behind Thailand's Puripol Boonsoon and China's Zeng Kili. Kujur's third place finish was enough to earn him a qualification for the semi-final. Wahi par agar baat kare Gurinder Veer's Keith, unhone finish kiya second in heat 4 of round 1. Gurinder Veer clocked 10.38 seconds to finish behind Oman's Malham Al-Balushi, who won the heat in 10.29 seconds. His second place finish was enough to earn him a place in the semi-final. To ummeedein ab in dono se rahengi sari hi bhartiyon ki hame ant mein ek medal ki yahan se सिर्फ गुंजाइश नहीं मेडल लेकर भारत में ये दोनों में से कोई एक तो जरूर वापस आए. अब बात करते वहीं पर वुमेन्स हेप्टाथलॉन के शॉटपुट में, जहां पूजा हैज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन. इंडियाज पूजा मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन आफ्टर रजिस्टरिंग अ थ्रो ऑफ 11.44 मीटर्स इन अ थर्ड अटेम्प्ट. पूजा हैड रिकॉर्डेड 11.20 मीटर्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट बिफोर फाइनली मैनेजिंग 9.91 मीटर्स इन अ सेकेंड. लेकिन क्योंकि उनका 11.44 मीटर का तीसरा अटेम्प्ट उनका सबसे बेस्ट था, उसको कंसिडर किया जाएगा एंड शी इज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ. एथलेटिक्स ट्रिपल जंप के अंदर भी निहारिका वशिष्ठ की कुछ ज्यादा बहुत बेहतर अच्छी शुरुआत नहीं रही है. फर्स्ट अटेम्प्ट उनका फाउल हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें आशा लांगू की कि तो उनका एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में पहला अटेम्प्ट ही बहुत अच्छा गया था 13.43 का, जिसकी वजह से क्योंकि उनका दूसरा अटेम्प्ट फाउल कंसिडर हो गया था, बट पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा होने की वजह से शी स्टिल इन दैट सेफ्ड बफर वेयर शी कैन होप टू गेट क्वालिफाइड इफ she is able to either better a third attempt or possibly this in itself achieves her that. अभी तक के एथलेटिक्स की यही अपडेट्स हैं आपके लिए दोस्तों, लेकिन ये अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे हर घंटे में, क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर और भी अपडेट्स आते रहेंगे शबाब.
5: उधर स्क्वाश की बात करें तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसने आज पूरे दिन भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है. पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स के स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली शानदार प्रदर्शन करते हुए, जबकि जोशना चिनप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंच गई. जूनियर विश्व चैंपियन और पदक के दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई यिन ओ उयोंग को महज 19 मिनट में 3-0 से यानी कि 11-4, 11-5 और 11-17 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी तय नहीं होगा पदक, ये खास बात है. कुछ इसमें तब्दीली आई है, हम बताएंगे आपको. इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यान ओ योंग को 39 मिनट में 3-1 यानी के 5-11, 11-4, 11-5, 13-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच ही मुकाबला तय हो गया है, यानी दो भारतीयों के बीच. पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा. कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा। ये खास बात है तो काफी दिलचस्प रहेगा। एक बार फिर दो भारतीयों के बीच मुकाबला भी हमें को देखने को मिलेगा।
3: तो आज का पूरा दिन स्क्वैश
5: खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया
3: जी शबाब। नाइस।

0: रिपोर्ट एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, जहां पर सुमित कुंदू ने आज भले ही अपने पहले दो बाउट्स की अच्छी शुरुआत करी हो, लेकिन तीसरे बाउट में चोटिल हो जाने की वजह से ही गॉट फॉरफीटेड और उनके जो ओपोनेंट थे इराक के अली अलसारे वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए। वहीं पर अगर हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग के एंगल से देखें तो भारतीय महिला बॉक्सर्स का भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साक्षी चौधरी लॉस्ट टू कजाकिस्तान्स अलोवा बालकेबेकोवा इन द वुमेन्स 51 केजी राउंड ऑफ 16 बाउट एंड एग्जिटेड द कंपटीशन। वहीं पर 65 केजी प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर मिल गया थैंकफुली, विच वाज गॉड्स एंड गिफ्ट एंड नाउ शी हैज मूव्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। शबाब
1: जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहा है। अब कई और ऐसे खेल रहे हैं जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जिन खेलों में सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारत को, मुक्केबाजी और निशानेबाजी, उसमें उतना वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी।
0: जी ऑफकोर्स निराशाजनक रहा, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आज प्राप्त हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट द मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट दैट हैपेंड व्हिच गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे, शूटिंग बीइंग दैट सेविंग ग्रेस, क्योंकि इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ओवरऑल अगर शूटिंग की बात करें। लेकिन अभी आई विल कम बैक टू एथलेटिक्स दोस्तों, बिकॉज एथलेटिक्स में आज बहुत इवेंट्स हैं। तो हेप्टाथलॉन की अगर हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स हेप्टाथलॉन आफ्टर 4 इवेंट्स क्या स्टैंडिंग है, तो भारत की पूजा इस वक्त बनी हुई है 8वें स्थान पर और वहीं पर अनामिका कोजिन जपारमविल भी बनी हुई है 9वें स्थान पर। नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो फातिमा है और नंबर 2 पर काई जुआन है। तो अभी ये कहना कि भारत यहां से कैसे क्वालिफाई करेगा या फिनिश ऑफ करेगा ये बहुत अर्ली ऑन होगा, बिकॉज इसमें अभी और इवेंट्स एड ऑन होंगे एंड देन वी विल कम टू सी दैट इन टोटैलिटी हाउ डज इंडिया स्टैंड, स्पेशली वेदर इट्स इंडियन वुमेन और इट्स इंडियन मेन व्हेन इट कम्स टू द टेबल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 में भारतीय मेन और भारतीय वुमेन एथलीट्स फिनिश कर रहे कि नहीं। लेकिन 4 इवेंट्स की समाप्ति पे हेप्टाथलॉन के रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार रहे और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि इस वक्त किस तरह की टेबल स्टैंडिंग्स यानी मेडल टेबल स्टैंडिंग क्या बनी हुई है भारत की। तो मेडल टेबल पर इस समय भारत है 14th पोजीशन पर, ही इज होपिंग दैट वी मूव ऑन द मेडल टैली, लेकिन अभी के लिए दैट इज ऑल दैट शबाब एंड मी साक्षी हैड इन दिस अपडेट। वी विल जॉइन यू बैक एट द 6:30 PM लाइव अपडेट ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: मेरी तरफ को 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान पीरियडिक एफएम अपडेट्स विनर వింటూనే ఉండండి ఇది ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం।
5: నువ్వు అడిగితే పాత పాట, నేను వేస్తే కొత్త పాట, రెయిన్బో కౌంటింగ్ స్టార్ట్ సమా 1, 2, 3 చెప్పు పాత పాట కొత్త పాట రెండు కదా, అయితే వేసుకుందాం ఒక ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్
6: రెయిన్బో ఎవర్ గ్రీన్।

0: Now, let's have a live update of 20th edition of Asian Games 2026 to be held in Japan on Akashvani.
1: Football मुकाबले का विवरण तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन फिलहाल एशियाई खेलों में क्या कुछ हो रहा है जापान में, उसकी ताजा तरीन रिपोर्ट के लिए हम आपको लिए चलते हैं अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के स्टूडियोज. भारत के खिलाड़ी वहां पर अपना सर्वस्व झोंकने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लिए पदक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं एशियाई खेलों में क्या है कुछ ताजा समाचार.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है शबाब अनवर. एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंग टू यू इन द 6:30 लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 इज फ्रॉम द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स. यस, वी हैव आवर इंडियन एथलीट सीमा who went on to get the bronze medal for us and for herself, clocking a timing of 32 minutes 50.05 seconds. She finished on the third spot right behind Bahrain, who grabbed the gold medal, while Japan's Tanaka Nozomi grabbed the silver medal. Good news coming in from the world of athletics, as was much expected. We are hoping that these medals go on increasing because athletics is one of the big hopes that India is going to be relying on. In the other news from athletics, hum aapko bata de ki women's triple jump ke andar Asha Elango missed out on a medal. Ji ha, Asha Elango could not improve. Unka jo pehla attempt tha, it was of 13.43. Second one was invalid. Third attempt was 13.83. Fourth was 13.63. Fifth was 13.65. And sixth was 13.59. अब आपको ये बता दे कि जो because she missed out on a final, what was the reason for that? It was because she was tied with China's Wai Li, but still with a best of 13.83. But Yai Li had a better second best. जो यहाँ पर आशा इलांगो का सेकंड बेस्ट था वो इनवैलिड कंसिडर किया गया था, जबकि चाइना की याई ली का सेकंड बेस्ट वाज 13.83 मीटर्स. एंड हेंस द चाइनीज वेंट ऑन टू गेट द ब्रॉन्ज मेडल, व्हाइल आशा इलांगो फ्रॉम इंडिया जस्ट मिस्ड आउट बाय अ विस्कर फ्रॉम स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री इन वुमेन्स ट्रिपल जंप टुडे. बट मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम इन लाइफ डेफिनेटली. अब बात करते हैं वुमेन्स हेप्टाथलॉन की. इन शॉर्ट पुट, वेब पूजा मूव्ड ऑन टू द फोर्थ स्पॉट आफ्टर रजिस्टरिंग अ थ्रो ऑफ 11.44 मीटर्स इन हर थर्ड अटेम्प्ट. आई विल कैरी on with these updates in athletics, but right now it's also time for me to queue back in Shabab, who has some updates to share with all you lovely people.
4: Yes, बहुत अच्छी खबर आपने शुरू में सुनाई सीमा कुमारी की, जिन्होंने कांस्य पदक जीता. और अब ऐसे खेल के बारे में जानते हैं जिनका ये मुकाबला शुरू होने से पहले पदक की पूरी उम्मीद सभी को होती है, वो खेल कबड्डी है, आप जानते ही है. तो आज के जो मुकाबले कबड्डी में समाप्त हुए हैं उसमें दोनों वर्गो के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है. पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. भारतीय महिला टीम कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम सुबह 10:45 पर थाईलैंड से मुकाबला करेगी. और एक यहां पर हम आपको बता दें कि एक अपसेट हुआ है, हालांकि उसका संबंध भारत से नहीं है. टेबल टेनिस का वो स्पर्धा है और उसमें 1990 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चीन चैंपियन नहीं बना है. इसमें जापान में आप जानते हैं कि मेंस टीम टेबल टेनिस फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. मेजबान टीम ने गोल्ड छीन लिया है. मेजबान जापान ने चीन को 26 साल लंबे दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया. इस हार के साथ चीन 1990 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के मेंस टीम टेबल टेनिस चैंपियन नहीं बन सका है. तो ये एक उलटफेर बहुत बड़ा हुआ टेबल टेनिस में.
3: हाँ जी शबाब, एंड कैरिंग ऑन दी अपडेट्स ऑफ एथलेटिक्स, आपको ये भी बता दें, आपको हमने ये तो बता दिया वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स में सीमा कुमारी ने आज ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स की हीट वन में अनामिका ने फिनिश किया चौथे स्पॉट पर विद द रिजल्ट ऑफ 14.80. वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स हीट टू में पूजा फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द रिजल्ट ऑफ 14.61. सो हेप्टाथलॉन के सारे इवेंट्स एक साथ जब टोटल किए जाएंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, आफ्टर दैट व्हाटएवर द टोटल स्टैंड्स विल बी द क्यूमुलेटिव फिगर टू डिसाइड ही कौन सा देश फिनिश करेगा इन द टॉप थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड. और ये रिजल्ट्स हम आपको कल ही बता पाएंगे बिकॉज हेप्टाथलॉन के कुछ इवेंट्स कल भी होने वाले दोस्तों. एंड आफ्टर दैट विल बी द फाइनल मेडल टैली काउंटिंग एंड ऑल्सो द टोटल नंबर्स काउंटिंग टू विच विल डिसाइड विच कंट्री स्टैंड ऑन विच पोजिशन. एंड अ क्विक वन ऑल्सो इन एथलेटिक्स इज दैट अनिमेश कुजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 meter सेमी फाइनल एट द एशियन गेम्स. वेल अनिमेश कुजूर हैड अ टाइमिंग विच क्लॉक्ड ऑफ 10.3

0: 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शाबाब अनवर एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे इज कमिंग एंड हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। जी हां, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे शुड आई बी सेइंग इज दैट इंडिया वेंट ऑन टू विन द सिल्वर मेडल इन 4x400 meter रिले मिक्स्ड इवेंट। द क्वार्टेट ऑफ पूवम्मा राजू, विशाल थेनारासु, विद्या रामराज एंड मनु टीएस who were representing India made sure that India finished with that coveted silver. At one point it looked that we might have to suffice with the bronze, but we were able to get that coveted silver for us. And also let me just inform all our listeners over here that India have already won the gold in 2018 and also the silver in 2022, and now we've been able to make sure that we maintain that silver once again into the 4x400 meter relay mixed event. Shabab,
2: yeah bilkul, aur ab us samay aa gaya hai shayad पांचवा छठा दिन के बाद के लगातार जो भारतीय एथलीट हैं वो अपना दबदबा बरकरार रखेंगे सभी खेलों में। कल कबड्डी का दोनों सेमीफाइनल है, लगभग पदक पक्का कर लिया है दोनों ही टीमों में, और आप जानती हैं कि किस प्रकार से अपने स्वर्ण पदक की रक्षा भारत को करनी है कबड्डी के खेल में। जापान को जिस तरह से अपने अंतिम मैच में हराया है, 50-25 का अंतर था, तो कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है, अगर एक मुकाबले को शायद हम छोड़ दें जिसमें ऐसा लगा हो कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो कहीं पर कांटे की टक्कर हुई हो। बहुत ही आराम के साथ हॉकी में भी और कबड्डी में भी, हॉकी में देखिए कोरिया से कहा जा रहा था कि शायद कोरिया की टीम जो है थोड़ी सी मजबूत साबित हो, लेकिन कोरिया को हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आसानी से 8-2 से पराजित किया। तो जिन खेलों में हमारे पास अच्छी शक्ति है उधर बहुत अच्छे तरीके से चीजें जा रही हैं।
1: राइट, आई विल गिव अ क्विक अपडेट ऑन ऑल द रिमेनिंग एथलेटिक इवेंट्स आल्सो दैट हैपेंड टुडे, वेयर सीमा कुमारी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक मेडल ऑफ एशियन गेम्स 2026 बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल टुडे। सीमा फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 32:50.05 एंड बैग्ड द नेशंस फर्स्ट मेडल इन द इवेंट इन 16 years। जी हाँ, 16 साल में पहली बार हमें ये पदक मिला है। अर्लिया आशा अलांगो नैरोली मिस्ड आउट ऑन अ हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेन्स ट्रिपल जंप मेडल। शी फिनिश्ड विद द सेम बेस्ट रो एज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बट मिस्ड आउट ड्यू टू अ वर्स सेकेंड बेस्ट अटेम्प्ट। वहीं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 meter सेमीफाइनल्स विद टाइमिंग्स ऑफ 10.38 seconds एंड 10.36 seconds रिस्पेक्टिवली। हेप्टाथलॉन में पूजा और अनामिका अनीश are not in the medal positions with 3 more events to go. कल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भारत की स्टैंडिंग किस प्रकार रहेगी मेडल टेबल में और खास तौर से एथलेटिक्स के अंदर। रोइंग के अंदर भी आपको क्विक अपडेट दे दे, द डे स्टार्टेड ऑफ विद अ मेडल फर्स्ट ऑफ ऑल दैट केम फ्रॉम द मेन्स डबल स्कल्स फाइनल, जिसके अंदर हमने देखा किस तरह से सतमान सिंह और सलमान खान ने आज तीसरे स्थान पर मेन्स डबल स्कल्स में विद द टाइमिंग ऑफ 6:13.25 seconds के साथ भारत को आज के दिन की अर्ली मॉर्निंग शुरुआत में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। शबाब,
2: जी बिल्कुल, शुरुआत तो आज सुबह में अच्छी रही, पहले सिल्वर सबसे पहले, फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिन में ऐसा लगा था कि सन्नाटा सा हो गया है, लेकिन अंतिम समय पर यह सन्नाटा पूरी तरह से चीरते हुए एक तरह से भारतीय एथलीटों ने फिर से जगा दिया है भारतीय खेल फैंस को।
1: जी, सन्नाटा इतना तो हुआ नहीं था क्योंकि यस, एक साइड पे हमने देखा रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान कैसे उन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलाया, उसी के साथ साथ वुशु ने भी आज सबसे बड़ी खबर दिन की हमें दी थी, जहां रोशिबेना देवी ने वुमेन 60 kg फाइनल्स में आज भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया। यस, वंस अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट, शी दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट हैपेंड बिकॉज शी वॉज एबल टू गेट अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स। आपको बता दें ब्रॉन्ज उन्होंने 2018 में कमाया था, उसके बाद 2022 में भी उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था, और अब उन्होंने इस साल के एशियन गेम्स 2026 में हैट्रिक ऑफ मेडल्स कंप्लीट कर लिया। सो अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर द इंडियंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशु। शूटिंग के अंदर शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही थी, लेकिन अंत में चलते चलते हमारे शूटर्स ने मिक्स टीम स्कीट फाइनल्स के अंदर हमें खुशखबरी दिलवाई दी थी क्योंकि उन्होंने हमें दिला दिया ब्रॉन्ज मेडल, एंड विद दैट समहाउ इंडिया कुड से दैट वी फिनिश्ड ऑफ ऑन अ सैटिस्फाइड नोट। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 15th इस समय, 16 मेडल्स आ चुके हैं भारत के पास जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है. वी आर होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन इन द कमिंग डेज इन द ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2026. इसके साथ आपको बता दें कि आज की अपडेट तो यहीं पर आके समाप्त होते हैं शबाब, लेकिन हम कल सुबह एक बार फिर 9:30 बजे से अपने श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के माध्यम

0: जुड़ेंगे, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एवरी आवर. फॉर नाउ इट इज शबाब अनवर एंड मी साक्षी मांडवाल सेइंग गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
2: Yes, those were the live updates of the 20th edition of Asian Games 2026 to be held in Japan, live from Delhi.

స్టాప్ డాన్సింగ్ పునగాలు లోడింగ్.

డోంట్ స్టాప్ డాన్సింగ్ పోనగాలు లోడింగ్.

0: పావులా మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడే.
1: ఏదో మీ అభిమానం ఒక్కాయ్.
2: Hey, don't stop dancing. Bonakalu loading.
3: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 हो चुके हैं. अब वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का. प्रोग्राम नए रंग हर शब पेश किया जाता है FM 101.9 MHz पर, जिसमें नित नए प्रोग्राम्स आपके खिदमत में पेश किए जाते हैं, जैसे हर्फ ताबिंदा, डॉक्टर माइक पर, बेदारी कायनात. इसके अलावा और कई प्रोग्राम्स जैसे कि गीत सुरीले गाता जा, जिसमें

हमें अपनी सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि सोच को हमेशा वसी रखने से आपके ऊंचे ख्वाब भी तकमील तक पहुंचते हैं। बड़ी सोच इंसान को बड़े ख्वाब देखने का हौसला देती है। जब ख्वाब वसी हों तो मंजिलें खुद करीब आ जाती हैं। छोटी सोच दीवारें खड़ी करती हैं, मगर बड़ी सोच दरवाजे यानी कि कामयाबी के दरवाजे खोलती हैं। जो सोच आसमान को छू ले वो जमीन पर निशान छोड़ती है। बड़ी सोच रखने वाले हमेशा तारीख में याद रहते हैं। इंसान का मुकाम हमेशा उसकी सोच की उसत के मुताबिक होता है। अगर सोच बुलंद हो तो मुश्किलात भी रास्ता बना देती हैं। बड़ी सोच दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बन जाती है। याद रखें, बड़ी सोच ही बड़े मुकाम का राज है। तो सामाइन, हमें हमारी सोच को बड़ी रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को महदूद रखें, छोटी रखें, तो ये पॉसिबल है, मुनासिब है कि हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आप हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें, बी पॉजिटिव, और आप अपने आप को, अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि जो भी काम आप तक आएगा आप उसको यकीनन करेंगे। ऐसी सोच आप रखिए, क्योंकि यही सोच आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। सामाइन, अच्छी सोच के बारे में, बड़ी सोच के बारे में कुछ बातें हमने आपकी नज़र की। अब आइए प्रोग्राम नायरंग का आगाज करते हैं।

0: प्री जान बनाते जा रहे हैं। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए डॉक्टर के मशवरे सुनिए उर्दू प्रोग्राम नैरंग के डॉक्टर माइक पर, हर जुमा रात 9:30 बजे आपके आकाशवाणी हैदराबाद रेनबो FM 101.9 पर।
2: सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग प्रोग्राम में अब आइए सुनते हैं मुशायरा। जी हाँ सामाइन, मुशायरा प्रोग्राम जो कि हर जुमेरात थर्सडे को पेश किया जाता है, इसी सिलसिले के तहत आज भी हम लेकर हाजिर हैं मुशायरा प्रोग्राम। इस मुशायरे में हिस्सा लेंगे मोहतरमा तस्नीम जौहर, जनाब हलीम बाबर, जनाब सैयद समी मोहम्मद हुसैनी और जनाब जावेद नसीम। आइए सुनते हैं।
3: ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से मैं जावेद नसीम अपने सुनने वालों की खिदमत में अपना आदाब और सलाम पेश करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की यह महफिल मुशायरे की महफिल है, और आज की इस महफिल में मैं हैदराबाद और महबूब नगर के चंद बहुत ही नामवर और मुमताज शोरा इकराम के साथ यहाँ बैठा हूँ। तो लीजिए प्रोग्राम शुरू करते हैं महफिल मुशायरा हैदराबाद ऑल इंडिया रेडियो से। आज की इस महफिल की शुरुआत करते हुए, हमारी इस महफिल में आज चूंकि एक खातून शायरा भी मौजूद हैं, तो अपनी उस रवायत को बरकरार रखते हुए मैं उन्हें ही आवाज दूंगा। वो है मोहतरमा तस्नीम जौहर साहबा। हाल ही में उन्हें प्राइड ऑफ तेलंगाना का खिताब भी दिया गया है। मोहतरमा तहसीन जौहर साहबा को मैं उनके ही एक शेर से आवाज दूंगा। समुन्दर से मेरा झगड़ा बहुत है, मैं खतरा हूँ, मुझे खतरा बहुत है। तो आपके सामने मोहतरमा तस्नीम जौहर साहब अपना कलाम पेश कर रही हैं।
4: हाजरीन इकराम, सामईन इकराम, आज की इस मखसूस नशिस्त में आपके सामने मैं अपने चंद अशआर पेश करना चाहती हूँ। एक किता सुनिए कि अश्क जब बोल रहे हूँ तो गजल कह लेना, जख्म लब खोल रहे हूँ तो गजल कह लेना, तायरे जब्त अलम शाखे तमन्ना से कभी अपने पर तोल रहे हूँ तो गजल कह लेना। एक और किता के आओ कुछ दर्द बांट लेते हैं, जिंदगी हंस के काट लेते हैं, कांटों के दरमियान से कुछ अपने हिस्से के छाट लेते हैं। एक गजल के चंद अशआर पेश करना चाहती हूँ। मतला अर्ज है, एक

0: दिले शिकस्ता तेरे हौसलों के हम कायल है, लख्त लख्त जिगर हौसला अभी तक है।
1: बहुत
0: मोहतरमा तस्नीम जौहर साहबा, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मेरे मुँह से आपका नाम शायद एक बार गलत निकल गया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी का खास्तकार हूँ। और इस प्यारी सी गज़ल के बाद ऐसा है कि हम लोगों की जो तश्नगी है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरन्नुम के साथ आपने इस गज़ल को अदा किया, उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी तरफ से भी और हमारे जो हमारे शोरा कराम बैठे हैं उनकी तरफ से भी, कि आप एक गज़ल अपनी इसी तरह तरन्नुम से पेश करें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपकी वो गज़ल जो कि सारे ज़माने को बहुत पसंद है, और जिस गज़ल को बहुत अच्छे अच्छे गुलकारों ने अपनी आवाज़ भी दी है, मैं बात कर रहा हूँ धूप क्या चांदनी क्या, आप आज की इस
1: इंशाल्लाह
0: महफिल में कम अज़ कम उस गज़ल के दो अशार
1: जी,
0: सुने,
1: ज़रूर
0: फिर
1: ज़रूर।
0: उसके बाद आप अपनी
1: मैं
0: पसंद का
1: इंशाल्लाह
0: कोई
1: मैं
0: एक गज़ल।
1: कोशिश करूँगी
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल
1: मुझे याद
0: बिल्कुल
1: आए, मैं अशार ज़रूर पेश करूँगी।
0: बिल्कुल
1: एक गज़ल के चंद अशार।
0: जी अशार।
1: धूप

जब

0: अगला शेर कुछ यूं है कि नशे का आलम बहक रहे थे सभी फरिश्ते, उठाई नजरें जो उसने जामे शराब रखकर। और ये शेर के दिया था मैंने कि आप दिल से लगाए रख, दिया था मैंने कि आप दिल से लगाए रखें, भुला ही बैठे हैं दिल को मेरे जनाब रखकर। के बड़ी थी ख्वाहिश के चूम लेता गुलाब लब के, बड़ी थी ख्वाहिश के चूम लेता गुलाब लब के, मगर वो सोई हुई थी रुख पर किताब रख, मगर वो सोई हुई थी रुख पर किताब रख कर। और वही चमक है, वही है रंगत गुलों के जैसी, कि वक्त शायद गुजर गया है शबाब रख कर, के वक्त शायद गुजर गया है शबाब रख कर। के अब गमों का शुमार कौन करे, दिल जिगर तार तार कौन करे, इश्क है एक आग का दरिया, ऐसे दरिया को पार कौन करे, और जो जमाने का यार बन बैठे फिर उसे अपना यार कौन करे। जो निगाहों से ही चटक जाए उस पे भरपूर वार कौन करे,
1: क्या कहने,
0: जो निगाहों से ही चटक जाए उस पे भरपूर वार कौन करे, दिल के खोने को एक काफी है प्यार भी बार बार कौन करे, दिल के खोने को एक काफी है प्यार भी बार बार कौन करे। और अगला शेर यूं है कि खून टपकने लगा कलम से मेरे, उंगलियां अब फिगार कौन करे। और ये तो फन्नान की महफिल है यहाँ, ये आप लोगों की नजर है कि ये तो फन्नान की महफिल है यहाँ, मुझको शायर शुमार कौन करे। और अब तो जावेद सफर को निकले, सुबह का इंतजार कौन करे। एक नज्म पेश कर रहा हूं कि जहां पे उर्दू जुबान उर्दू वालों से मुखातिब है। हुजूर, अदब और तहजीब की दास्तां हूं मैं उर्दू जुबान हूं, अदब और तहजीब की दास्तां हूं मैं उर्दू जुबान हूं, मुझे आर्याओं ने दिल से लगाया, मुगल बादशाहों ने जीना सिखाया, बनाकर मुझे लश्करों का सफीना, जुबान को अदब का करीना सिखाया, अदब और करीने का मैं आसमां हूं मैं उर्दू जुबान हूं। मेरी वसतें हैं समंदर के जैसी, मेरी चाहते हैं कलंदर के जैसी, मोहब्बत की दुनिया में जलवा नुमा हूं, सितारों की झुरमट में मैं कहकशां हूं, मैं उर्दू जुबान। खुदाए सुखन मीर की मैं हूं बांदी, मैं गालिब की दुल्हन मैं हूं मिसले चांदी, मैं इकबाल के ख्वाब की शाहजादी, मोहब्बत अखुवत का एक आसमां हूं मैं उर्दू जुबान। और आगे कुछ यूं है कि लताफत है मुझ में, जराफत है मुझ में, जुबानों बयां की शराफत है मुझ में, मेरी जात में कितने उनसर हैं पिन्हा, वली की कुली की इनायत है मुझ में, मुझी में है पिन्हा वो तहजीब जिसकी, निजाबत का मुंह बोलता मैं बयां हूँ, मैं उर्दू जुबान मैं उर्दू जुबान हूँ। है मेरे वतन से बशीर और आसी, है फैजो फराजो जफर मेरे बासी, है मजरूह हुसाहिर मेरे ही प्यादे, जुबां के बने जो हसीन शाहजादे, मैं उनकी मोहब्बत का एक आशियां हूँ मैं उर्दू जुबान हूँ।
1: वाह वाह वाह,
0: ये दीवाने गालिब ये दीवाने आतिश, ये बांगे दरा बाले जिब्रील व बातिश, अदीबों की शौरा की जो भी है काविश, मैं उनकी लकीरों में खुद भी नेहा हूँ मैं उर्दू जुबान हूँ।
1: बहुत अच्छा।
0: फिराक और मुस्तर जो हाफिज है मेरे, मुलाजा कीजिएगा कि फिराक और मुस्तर जो हाफिज है मेरे, हफीज और हाफिज मुहाफिज है मेरे, है मेरी अदा अगर अदा जाफरी में, तो सजदे छुपे हैं कई काफरी में, जिगर के जिगर का मैं सोजे नेहा हूँ, मेरी अहमियत को भुलाना है मुश्किल, मेरी हैसियत को मिटाना है मुश्किल, किताबों से मुझको हटाना है मुश्किल, मुझे इस कदर आजमाना है मुश्किल, मैं मंजिल भी हूँ और एक कारवां हूँ मैं उर्दू जुबान। फकत आम इंसान नहीं मेरे कायल, है गर आम कायल तो है खास घायल, दिलों पे मैं शाहों के भी हुक्मरां हूँ, मैं जज्बाते जावेद की तर्जुमा हूँ, मैं शायर के शेरों की रूहे रवा हूँ मैं उर्दू जुबान हूँ उर्दू जुबान।
2: मुशायरा अभी आपने समाप्त किया सामाइन। इस मुशायरे में हिस्सा लिया था मोहतरमा तस्नीम जौहर, जनाब हलीम बाबर, सैयद समी मोहम्मद हुसैनी और जनाब जावेद नसीम ने। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
3: FM Rainbow 101.9।
2: प्रोग्राम नए रंग आप सुन रहे हैं। हम जानते हैं नए रंग प्रोग्राम में आप इंतजार करते हैं गीत सुरीले गाता जाके, तो आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं सामाइन। तो चलिए बिला ताखीर गीत सुरीले गाता जा की शुरुआत करते हैं। आज हम गीत सुरीले गाता जा में बात करेंगे आज के दिन की अहमियत के बारे में, जो कि है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी आलमी बहरी दिन। इसके ताल्लुक से ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसके मकासद क्या हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ सुरीले नगमे। जी हाँ सामाइन, बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। समाइन के आप जानते हैं ये किस गीत के बोल हैं? नहीं, नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। ये फलसफियाना शेर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के मशहूर व मारूफ नगमे रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा का एक जबरदस्त बंद है, जिसे गीतकार अनजान ने लिखा था और किशोर कुमार ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। इस शेर में जिंदगी और मौत के फलसफे को बड़ी शायराना खूबसूरती से बयान किया गया है। जिंदगी तमाम तर रंगीनियों, खुशियों और ताल्लुकात के बावजूद आरजी है, ये जितनी भी प्यारी लगे एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देती है। शायर ने मौत को एक ऐसी महबूबा से तशबीह दी है जो बिलाखिर इंसान का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाती है, यानी मौत ही कायनात की वाहिद और अटल हकीकत है। ये शेर इंसान को जिंदगी की फानी नौयत और उसके साथ जुड़ी वाबस्तगियों की आरजी हकीकत का एहसास दिलाता है। आइए इस शेर को सुनते हैं इस गीत के जरिए।

किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जी हां सामाइन, जिंदगी की असल खूबसूरती शायद इसी उतार चढ़ाव और नापायदारी में है। अगर सिर्फ जिंदगी में हंसी हो तो इंसान खुशी की कदर भूल जाए, और अगर सिर्फ आंसू हो तो उम्मीद की शमा बुझ जाए। कभी बिना मांगे खुशियों की बरसात और कभी बेवजह दिल का उदास हो जाना, यही मुतजाद एहसासात मिलकर इंसान को मुकम्मल, हसास और मजबूत बनाते हैं। जिंदगी एक पहेली, शायद जिंदगी एक पहेली है, शायद सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि उसके हर रंग को जीकर महसूस करने के लिए बनी है।

कभी तो हंसाए। मन्ना डे को आपने सुना आनंद फिल्म से लिए गए गीत में। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। सुरीले गीतों का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर जिंदगी को एक खेल मान लिया जाए तो इसके खवानीन आम खेलों से जरा मुख्तलिफ हैं। यहां पास या फेल होने का असली मेयार महज दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि इंसान का अपना अंदरूनी सफर है। बजाहिर नाकाम नजर आने वाला शख्स भी अगर हर मुश्किल का मुकाबला हौसले और सब्र से करे तो वो अपने इम्तिहान में कामयाब ही कहलाता है। जिंदगी के इस खेल का सबसे दिलकश पहलू यह है कि जब तक सांस की डोर कायम है आखिरी सीटी नहीं बजती। हर नया दिन एक नया मौका फराहम करता है जहां आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर खेल का रुख बदल सकते हैं। कामयाबी इसमें नहीं कि इंसान कभी ना गिरे बल्कि इसमें है कि हर बार गिरकर नए जज्बे के साथ दोबारा उठ खड़ा हो।

0: मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में सीता और गीता फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं नायरन प्रोग्राम, और नायरन प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सुरीले गीतों का प्रोग्राम, गीत सुरीले गाता जा। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।
1: FM Rainbow 101.9.

सामाइन नायरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और नायरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा ये सिलसिला जारी है। अब गीतों के दरमियान हम बात करेंगे आज के इस दिन के अहमियत के बारे में। आज दुनिया भर में वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी आलमी बहरी दिन मनाया जा रहा है।

के तहत आलमी सतह पर मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 17 मार्च 1978 को बैनुल अक्वामी बहरी तंजीम इंटरनेशनल मरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन के नुफाज की 20वीं सालगिरह के मौके पर मनाया गया था। इसके मकासिद और अहमियत के बारे में जानते हैं। आलमी मईशियत में इसका किरदार के बारे में, दुनिया के 80% से जायद तिजारत समंदरी रास्तों के जरिए होती है। ये दिन आलमी सप्लाई चेन और मुआशी निज़ाम में बहरी सनद की अहमियत को उजागर करता है। समंदरी तहफ़ मरी टाइम सेफ्टी जहाज रानी के दौरान तहफ़ के बैनुल अक्वामी मेयार को बरकरार रखना और समंदरी हादसात की रोकथाम के इकदामात को फ़रोग़ देना इस दिन को मनाने का मकसद है। समंदरी आलूदगी को कम करना, प्लास्टिक और ईंधन के ज़िया से समंदरी हयात को महफूज रखना और पायदार बहरी तरक्की सस्टेनेबल शिपिंग पर जोर देना। दुनिया भर के समंदरों में दिन रात खिदमात अंजाम देने वाले सरफराज जहाज़रानों, सी फेरर्स और बहरी अमले की मेहनत को सराहना इस दिन का अहम मकसद है।

सागर फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और नायरंग में गीत सुरीले गाता जा का सफर जारी है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मरीटाइम डे के बारे में। इस दिन का मकसद ये है के जहाज रानों की खिदमत का एतराफ करना। दुनिया भर के समंदरों में दिन रात अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सरफराज जहाज रानों, सी फेररर्स और बहरी अमले की मेहनत को सराहना इस दिन का मकसद है। अक्वामे मुत्तहिदा और आईएमओ यानी इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसे हर साल सितंबर की आखिरी जुमेरात को आलमी सतह पर मनाया जाता है। बैनुल अक्वामी बहरी तंजीम इंटरनेशनल मरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो अक्वामे मुत्तहिदा की एक खसूसी एजेंसी है, इस दिन के तमाम अहम उमूर और आलमी तकरीबात की निगरानी करती है। साल 2026-27 का जो थीम है वो ये है कि पावरिंग मरी टाइम एक्सीलेंस फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस, पॉलिसी से अमल तक बहरी उम्दगी को फरोग देना इस साल का इस दिन के मनाने का मकसद है। आईएमओ ने तारीख में पहली बार किसी मौजू को मुसलसिल 2 साल 2026 और 2027 के लिए मुंतखब किया है। इसका बुनियादी मकसद आलमी सतह पर तयशुदा बहरी खवानीन मुआहदों और माहौलियाती पॉलिसियों को सिर्फ कागजात तक महदूद रखने के बजाय अमली तौर पर जहाज रानी की सनत और तमाम ममालिक में नाफिज करना है। आलमी तिजारत का महवर दुनिया भर की 80% से 90% बैनुल अक्वामी तिजारत समंदरी रास्तों के जरिए अंजाम पाती है। खाम तेल यानी क्रूड ऑयल, गजाई अजनास, अद्वियात और सनती सामान की फराहमी का इन्हिसार बहरी जहाज रानी पर होता है। कम लागत जरिए नकलो हमल, भारी और बड़ी मकदार में सामान को एक बर आजम से दूसरे बर आजम मुंतकिल करने के लिए बहरी नकलो हमल सबसे सस्ता और मौसर जरिया है।

नायरंग प्रोग्राम पेश हो रहा है और प्रोग्राम नायरंग में सुरीले गीतों का सफर जारी है और साथ ही हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी आलमी बहरी दिन क्यों मनाया जाता है जानने की कोशिश कर रहे हैं फिल्मी गीतों को सुनते हुए। तो आइए समाइन वर्ल्ड मैरीटाइम डे के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। समंदरी तहफ़ुज़ और नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी जहाज़रानी के आलमी ख़वानीन और जदीद तकनीकी मेयार को बरकरार रखना ताकि हादसात और समंदरी खजाफी से बचा जा सके। माहौलियाती तहफ़ुज़ ग्रीन शिपिंग समंदरों को जहरीले मादों तेल के रसने और प्लास्टिक की आलूदगी से पाक रखना। इसके अलावा बहरी जहाज़ों से होने वाले कार्बन के अखराज को कम करना ताकि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सके। जहाज़ रानों के हुकूक सी फेयरर्स राइट्स दुनिया भर में समंदरों के दरमियान खिदमात अंजाम देने वाले लाखों अमले की हिफाजत जहनी व जिस्मानी सेहत और मुलाजिमत के बेहतर हालात को यकीनी बनाना इस दिन को मनाने का मकसद है यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे को मनाने का मकसद है। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती

सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा आपने समाप्त किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो गीत आपको सुनवाए गए आपने पसंद किए होंगे। साथ ही आज के दिन की अहमियत के बारे में हमने आपको बताया कि आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी आलमी बहरी दिन के तौर पर क्यों मनाया जाता है, इसकी अहमियत के बारे में हमने समझने की कोशिश की गीत सुरीले गाता जा के साथ साथ। समाइन प्रोग्राम नए रंग का अख्तिताम हुआ चाहता है। आइए अख्तिताम से पहले सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब सैयद नदीम अख्तर जैदी की।

तोड़ कर अहद करम न आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा कफा हो जाइए। रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और एहसास से कायम रहते हैं। कभी किसी की बात या अमल से दिल आजारी हो जाए तो फौरन रिश्ता तोड़ देना दानिशमंदी नहीं। नाराजगी का इजहार जरूर करें मगर दरवाजा मुकम्मल बंद ना करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत और मुखलिस ताल्लुक में माफी, सब्र और वापसी की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। इस शेर का बुनियादी पैगाम ये है कि कफा होना हक है मगर बेवफा हो जाना नहीं। शिकायत कीजिए मगर ताल्लुक खत्म ना कीजिए।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज़ की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व तो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एमडीआर का 1 भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाज धालीवाल अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris, travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The Minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasised that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस स्लंप. सेंसेक्स टंबल्स ओवर 1200 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1,200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment.

0: for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73581 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23063 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला. मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया. सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई.
0: Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% today. Sensex tanked 1,028 points to close at 73,581. Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. In the broader market at the NSE, the mid-cap 100 index shed 2.3%, while the small-cap 100 index lost over 1.5%. This morning, markets opened with a gap down as a spike in bond yields, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the second half of the trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा. प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ.
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6%, and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced, and 216 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उद्यन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूँ, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद. कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं. लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में, जो 1.5% आज मार्केट गिरा, उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफी कंट्रीब्यूट योगदान रहा, और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है. तो
1: दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है. जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है. तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपके बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर है, जो मैनेज करती हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहां पे कमीशन मिलता है, वहां पे फीस होती है, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो हैं उसमें, अभी तो वो नियम बने नहीं है, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है. और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया. क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है. और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव की के संकेत हैं. उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज, जो बीमा क्षेत्र की कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहां, देखिए बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया होते हैं, उनके थ्रू से होते हैं, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकिंग, और तीसरा होता है बैंक के थ्रू से जाता है. तो ये तीन पाइप्स हैं जिनके थ्रू से आम जनता या जो भी उपभोक्ता उसके पास पहुंचती, ये तीनों में असर है। ये जो डिस्कशन पेपर है वहां पे तीनों में असर है। और आप अगर बेचते हैं उसमें उसके एवज में आपको जो कमीशन मिला करता, तो उसमें कमी के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप कमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां उसको बेचती थी, जो इनको मैन्युफैक्चर करते, जो बीमा कंपनी इनको तैयार करके छोड़ते थे, क्योंकि अगर आपके बिचौलिए या ब्रोकर्स या एजेंट बेचेंगे तभी आप कमाएंगे
1: जी।
2: तो नंबर वन इनको फर्क पड़ा, इंश्योर बीमा कंपनी के जो कंपनी है वो उनको फर्क पड़ा, जो बीच में है उनको फर्क पड़ा, और जो बैंक है उनको फर्क पड़ा। तो अगर आप बीमा कंपनी और बैंक अगर लेते, बैंक खुद ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में आप इंडेक्स में देख लीजिए, जबरदस्त उनका वेटेज है। तो ये दोनों मिला के ही, ये अगर ये तेल के दाम वाला जो सुर्खी जो है वो ना होता, ये खुद में ही काफी था। और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया, जो उसकी खबर आएगी, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, और चारों तरफ विश्व भर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया। तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट में रिएक्शन देखा। तो ये बताता चलूं एक सेंटेंस और, कि बैंकों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है। तो बैंकों के दो तरह के आय होते हैं, एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके, वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं, तो वो फंड इनकम होता है। तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फी इनकम, वो इंश्योरेंस को बेचते हैं, उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है, ब्रॉडली हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था। अब अगर कोई आके कहता कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा, या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले, एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी ब्रोकिंग कंपनी में, ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, सब में ये फर्क पड़ जाता है। तो इसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से।
0: So basically, IRD has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee, and the distributors being banks, so the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
1: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए तीन स्तरीय सरल व्यवस्था, खर्च की सीमाओं में कमी, कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा वितरण व्यवस्था, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी। कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों में भी कमीशन से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक ये जान सके कि पॉलिसी की कीमत में वितरण की कितनी लागत शामिल है। इरडा ने प्रस्ताव दिया है कि हर बीमा पॉलिसी को बेचने वाले संबंधित व्यक्ति की पहचान से जोड़ा जाए, साथ ही बीमा की गलत बिक्री से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक की जाए और गलत बिक्री के मामले में एजेंट या संबंधित विक्रेता से कमीशन वापस लेने का प्रावधान किया जाए। प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुधारों पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 25 अक्टूबर 2026 तक सुझाव तथा टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
0: उदयन, व्हाइल देयर इज क्लियरली अ बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज लाइकली टू कम डाउन बिकॉज ऑफ अ कैप ऑन एजेंसी फी, द मार्केट टुडे लॉस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीज financial and insurance stocks because of the hit on their income sources with this policy decision, which is not, it's been a recommendation right now by IRDA. How do you see the markets bouncing back, especially in the backdrop of what's happening geopolitically?
2: Well, let's start with the insurance bit, because I think it's fairly important what has come out. So, you know, this, even if I want to be very

0: that the baseline UPI MDR of 0.4% on transactions above 2,000 rupees with a cap of 300 rupees for high-value purchases has been set to ensure that UPI remains the most affordable digital payment acceptance tool for commercial enterprises. It said that this cost difference helps merchants lower their payment processing expenses while accepting digital transactions. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्ध विराम को 2 महीने बढ़ाने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों को व्यापक आर्थिक समझौते पर बातचीत के लिए और समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बुसान समझौते के अंतर्गत हुआ ये युद्ध विराम अब 10 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। मूल युद्ध विराम समझौते की अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। ये समझौता पिछले अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई सहमति के बाद हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील और व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए भारी शुल्क को रोकना शामिल है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उदयन, आप इसे कैसे देखते हैं और बेसिकली स्टॉक मार्केट पर इसका आप कैसा प्रभाव देखेंगे?
2: नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है, पर दिलचस्प बात यह है कि अभी ये तब हो रहा है जब वो 100% 100% टैरिफ लगाने वाली बात हो रही थी जो भी रशिया से तेल लेंगे। देखिए कैसे मानदंड है, चीन के लिए एक मानदंड है
1: जी
2: और हमारे लिए एक मानदंड है
1: जी।
2: तो ये आपने सवाल पूछा नहीं था पर ये बताने लायक बात है
1: जी बिल्कुल,
2: क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत भारत और अमरीकी प्रशासन के बीच में हो रहा है तो दिलचस्प बात ये कि उससे जो नेगेटिव हेडलाइन बनता है और सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि बुरे खबरों का जो हेडलाइंस हैं वो कुछ ज्यादा ही आ रहा है तो उसका जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, हाई ऑयल प्राइसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन के ऊपर असर, तो एक और सुर्खी ऐसी आ जाती है जो नेगेटिव होती है, उससे बेहतर है कि जितने हैं उसी को हम मैनेज करें।
3: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 2.1% higher at $105.25 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.7% up at $93.76 per barrel at the time of writing this report. Then some more bad news. Diesel prices have been going up substantially in this short term. How is that going to be arrested?
2: I don't know much about diesel prices in India. I've only read about in the US. But if they are going up, I'm sure the government is going to intervene because it's an essential input in agriculture and in your transport. So I don't think the government is going to be a spectator in this, and they will come into act. But this is not as tough, Arjun, to manage as the LPG problem and the natural gas problem, which we were
3: importing. Affecting Russia and Europe because of what's happening.
2: No, of course, we have long-term contracts with Qatar, so that was an issue. But I think this is more manageable, I would say.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 0.8% की गिरावट के साथ 1,50,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% के नुकसान से 2,28,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए।
2: धन्यवाद।
3: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices slump. Sensex tumbles over 1,200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said, spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vatnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं. एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए. एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
2: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to customers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Browne, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said, the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France Reparatory Justice. Secretary East External Affairs Ministry Rudrendra Tandon attended the National Day reception of Uzbekistan in New Delhi. In a social media post, External Affairs Ministry said the Secretary East highlighted the progress in India-Uzbekistan relationship across diverse sectors and reaffirmed the resolve to further enhance comprehensive strategic partnership between them. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for a heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbha today. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana today. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing at third spot in 32.50 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, आवाज है मुकेश की और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

जी हाँ, एक वो भी जमाना हुआ करता था जब परदेश जाने वाले की एक उम्मीद बंधी होती थी कि परदेसी परदेश में सुकून से अपना काम कर पाता था और प्रेम को संजो कर रख पाता था, क्योंकि प्रेम खत में बंद होकर पास पहुंचता रहता था और उसी प्रेम के सहारे वो परदेश में खुशी खुशी अपना काम करता था, जीवन यापन के संसाधन जुटाता था और फिर उन संसाधनों के साथ प्रेम की सौगात लेकर वापस अपने गांव की तरफ लौटता था, अपने घर की तरफ लौटता था। एक वो भी जमाना हुआ करता था। कभी खत लिखना एक रस्म हुआ करती थी। कागज पर किसी अपने का नाम लिखते ही मन खिल उठता था। स्याही सूखने तक जैसे भावनाएं उसी पन्ने पर सांस लेती थी और फिर लिफाफा बंद होता और इंतजार शुरू। डाकिये की साइकिल की घंटी कितनी प्यारी लगती थी उन दिनों। एक खत आता था और पूरा दिन अपना हो जाता था। और आज संदेश पल भर में पहुंचते हैं, मगर उस इंतजार जैसी मिठास नहीं होती। कहते हैं कुछ रिश्ते शायद दूरी से नहीं पर इंतजार से गहरे हुआ करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उसी पुराने जमाने की ओर और लौटते हैं उसी पुराने जमाने में, करते हैं ढेर सारी बातें। फिलहाल सुनते हैं एक गीत, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में मैं हूं आपके साथ जयती। बात कर रहे हैं उस जमाने की जब खत लिखना किसी रस्म की तरह हुआ करती थी और निभाने वाले बड़े मन से इस रस्म को निभाया करते थे। गांव की गलियों में डाकिये की आहट कभी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। लोग अपने नाम की पुकार सुनने को बेचैन रहा करते थे। किसी के लिए मायके का खत आता और किसी के लिए परदेश गए पिया का संदेश होता। नवविवाहिता के लिए तो वह लिफाफा जैसे उसके अपने घर की खुशबू लेकर आता और कभी कभी प्रेम में सराबोर होकर वो खत जब नवविवाहिता के पास पहुंचता तो चेहरे पे जो रंग आते थे वो रंग भी देखने लायक होता था। कागज खोलने से पहले ही आंखें जाने कितनी बातें पढ़ लिया करती थी। एक छोटा सा खत कई दिनों की दूरी मिटा देता था। आज आवाज और तस्वीरें तुरंत पहुंच जाती हैं, पर उस कागज को छूकर अपनेपन को महसूस करने की जो बात हुआ करती थी वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। और यही था खतों का वो खूबसूरत सा दौर। आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात कर रहे हैं बीते जमाने में जो खतों की एक दुनिया हुआ करती थी, जब खत लिखना सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था, खतों में छुपी होती थी।

दुनिया भर की बातें, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा इंतजार और न जाने कितनी सारी बातें। कागज के एक टुकड़े में बंद होकर वो खत, जिसे जहां पाना होता था, जब वो खत मिलता था तो पाने वाला भी उन सारे एहसासों से होकर गुजरता था जो लिखने वाला कागज में बंद करके अपने प्रियतम तक पहुंचाता था। गांव की नई दुल्हन को मायके से आया खत सिर्फ कुछ पन्ने नहीं, पूरा अपना घर जैसा लगता था। माँ की लिखावट देखते ही आंखों में आंगन उतर आता। बाबूजी का हाल पढ़ते हुए मन जैसे घर की चौखट तक पहुंच जाता था। भाई की शरारतें, बहन की शिकायतें, सब कुछ कुछ पंक्तियों में समाया होता था। वो खत पढ़कर कई बार तह किया जाता, फिर संदूक या कपड़ों के बीच बड़े जतन से रख दिया जाता, क्योंकि कागज पुराना हो सकता था मगर उसमें लिखे अपने लोगों के शब्द कभी पुराने नहीं होते। शायद इसलिए खतों में आज भी स्मृतियां कहीं ना कहीं जीवित हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, जैसे नव ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे ओस में भीगे लगते हैं, धरती के सपनों से न्यारे। भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भर आया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया। रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया। भोर की पहली किरण पड़ी, पारिजात मुस्कुराया, रात की गोद से झरकर धरती ने श्रृंगार सजाया। सफेद पंखुड़ियों के बीच केसरिया रंग दमकता है, जैसे किसी चित्रकार ने एक रंग से स्वप्न रचा है। हवा चले तो महक उठे पूरा आंगन पूरा द्वार, इतना कोमल फूल की जैसे छू जाए कोई मधुर विचार। पारिजात की इस खुशबू में रात अभी भी बाकी है, भोर भले आ गई हो लेकिन फूलों में अब भी रात बाकी है, फूलों में अब भी रात बाकी है। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है भाभी।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अभी तो मरने हैं वो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबियत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं हमें इन अनुभवों से भी सीखना है अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने
0: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West Sibi George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे खतों की, और भी बातें करेंगे खतों की, उस जमाने की बातें करेंगे, लेकिन जब इतनी बातें हो चली हैं तो क्यों ना हम थोड़ी बातें मौसम की भी कर लें। जी हाँ, बारिश का जाता हुआ मौसम अपने पीछे बहुत सारी मीठी मीठी यादें छोड़कर जाता है। बारिश भी हमें बीते जमाने की याद दिलाती है। बचपन में बारिश आती थी तो गली का पानी जो है वो नदी बन जाता था, कागज की नाव बहती थी, और उसे बहते देखना किसी बड़े सफर से कम नहीं लगता था। किसी की नाव सबसे आगे निकलती और किसी की मोड़ पर पलट जाती। हारने का दुख भी बस उतनी ही देर रहता जितनी देर दूसरी नाव बनाने में लगती। आज उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया, मगर उस खेल की एक बात अब भी बहुत खूबसूरत है, चल पड़ने के लिए हमेशा बड़ी नाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा कागज भी पूरे बचपन को एक छोटी सी नदी दे देता है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाना।

और गीत सुहाने में आपके साथ हूँ मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है बातों बातों में।

उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

बात हो रही थी खतों की, पुराने जमाने की। तो खतों के जमाने में इंतजार की भी अपनी खूबसूरती थी। जवाब आने में कई कई दिन लग जाते, लेकिन उन दिनों में हर आहट उम्मीद बनकर आती थी। डाकघर से निकला एक लिफाफा कितनी दूरियां पार करता था, किसी शहर से किसी गांव तक, किसी आंगन से किसी मन तक। आज हम पढ़ लिया और देख लिया, कुछ सेकंड में जान लेते हैं, तब एक जवाब के लिए कई दिन दिल थाम कर बैठना पड़ता था। शायद इसलिए उन दिनों के रिश्तों में शब्दों की कीमत ज्यादा महसूस होती थी। एक खत देर से आता, मगर आते ही जैसे पूरा इंतजार सार्थक कर देता था। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म का नाम है साजन, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और एक बार फिर से वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़ जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आप आए बहार आए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4था उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में हम बातें कर रहे हैं। आज जो विषय लेकर हम आपके पास आए हैं वो है पुराना जमाना, और खासकर जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं खतों की। जी हाँ, जब खतों की बातें चली हैं तो पाना, लिखना, खत भेजना, इन सारी बातों में एक और बात आती है कि खत लिखने वालों के लिए ये भी किसी धुन से कम नहीं थे जो बैठकर खत लिखा करते थे।

सोचा जाता था कि क्या लिखना है, फिर शब्द चुने जाते थे और फिर पन्ने पर एक एक बात बड़ी कारीगरी के साथ उतारी जाती थी। गलती हो जाए तो पूरा पन्ना बदलना पड़ता था, इसलिए लिखे हुए शब्दों में एक ठहराव, एक सावधानी होती थी। शायद इसी कारण पुराने खत पढ़ते हुए हमें सिर्फ लिखा हुआ नहीं, लिखने वाले का मन भी महसूस होता था। हर अक्षर में उसका समय लगा था, हर पंक्ति में उसका इंतजार। यही तो खतों की असली खूबसूरती थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। आज हमने बहुत ढेर सारी बात की, बीते हुए जमाने की, खतों की बारिश की, पर कुछ बातें खतों की अब भी रहती हैं। ये वो जमाना था जिसकी जितनी बातें करें

बातें निकलती चली आती हैं। पुराने घरों के संदूक में कपड़ों के साथ कुछ खत भी बड़े जतन से रखे जाते थे। कागज पीला पड़ चुका होता था, स्याही भी कहीं कहीं हल्की हो जाती, मगर पढ़ने वाले की आंखों में वही कहानी आज भी साफ साफ दिखाई दे रही होती। हर खत किसी बीते हुए रिश्ते का प्रमाण नहीं, हर बीता हुआ समय किसी की धरोहर होता था। उसे खोलते ही कई आवाजें लौटकर आसपास आ जाती थी, मां की, पिता की, किसी भाई की, किसी प्रिय की। आज शायद हम संदेश डिजिटल दुनिया में सुरक्षित करके रख भी लेते हैं, लेकिन पुराने खतों की तरह उन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। कागज सचमुच यादों को एक आकार दे देता था, जिन्हें देखकर, जिन्हें छूकर, जिन्हें पढ़कर हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाते। एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक गांव के एक छोटे से घर में बैठी हुई नई नवेली दूर अपने पिया के पास परदेश में खतों के माध्यम से पहुंच जाती, और पिया की जो वो भावनाएं थी वो नवेली के पास खतों में सिमट कर पहुंच जाती। कितना सुंदर होता था वो दौर, जिस दौर को हम जाने कहां पीछे छोड़ आए हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई, और अगला गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्पण।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ ही हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे दीजिए अनुमति, छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 5 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और रात की इस तन्हाई में कभी कभी जिंदगी की भागती दौड़ती राहों में कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसकी मौजूदगी भर से दिल को सुकून मिलने लगता है जैसे किसी तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका जैसे किसी खामोश शाम में दूर से आती हुई कोई मीठी सदाएं और जैसे किसी अधूरी दास्तान को अचानक उसका सबसे खूबसूरत लफ्ज मिल जाए। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी का साथ पाना नहीं बल्कि उसके आने से अपनी दुनिया को रोशन होते देखना भी है। आज का ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है कुछ ऐसी ही कैफियत अपने अंदर समेटे हुए हैं एक ऐसा गीत जिसमें मिलन की खुशी है दिल की नरमी और रिश्तों की वो गहराई है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। गुलजार साहब के खूबसूरत अल्फाज और आरडी बर्मन साहब के दिल को छू लेने वाले ये संगीत और लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की आवाज तो फिर ये दुनिया ही बिल्कुल अलग सी लगने लगती है। फिल्म आंधी का ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा आपके लिए हमराही के इस महफिल के आगाज में

हो नूर आ गया है। हर इंसान की जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसके आने की खुशियां इतनी खूबसूरत होती है कि पूरी जिंदगी उसी एहसास के साए में गुजार देने की कोशिश करता है। कहते हैं दिल की किताब का पहला पन्ना हमेशा कोरा होता है, ना कोई कहानी ना कोई अफसाना, बस कुछ अनकहे ख्वाब और अनजाने एहसास। फिर जिंदगी में कोई आता है और उसकी एक मुस्कुराहट, एक नजर, एक मुलाकात उस कोरे कागज पर मोहब्बत की पहली इबारत लिख देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं पड़ती, बस किसी का साथ, उसकी आवाज और उसके होने का एहसास दिल को मुकम्मल कर देता है। आज का अगला ये नगमा भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा गीत जिसमें इश्क की मासूमियत है, जज्बात की रवानी है और प्यार के रंगों से सजे एक दिल की कहानी है। फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत आनंद बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन का बेहद खूबसूरत संगीत और किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों का जादू जो आज भी दिल के किसी खामोश कोने को छू जाते हैं और फिर ऐसे अल्फाज निकलने लगते हैं। आज अपने दिल के उस कोरे कागज को कुछ हसीन यादों के हवाले करते हैं हम और आप मिलकर, शायद कोई पुरानी मोहब्बत याद आ जाए, शायद कोई भूला हुआ चेहरा मुस्कुरा उठे, या शायद किसी खास शख्स की कमी से ये महसूस हो जाए। कि कोई था हमारी जिंदगी में जिस नगमे के जरिए लौट कर आ गया है।

0: क्या हुआ?
1: अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बहक जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती।
0: अरे बीनू, तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग, मेरे पास आओ।
1: छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो।
0: डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का।
1: मत छुओ मुझे।
0: अरे बीनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो बीनू मेरी बात तो सुनो। बीनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो

0: मैंने तो ऐसे ही कहा था। यकीन करो भगवान के लिए, तुम्हें मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, वापस आ जाओ वरना वरना मैं यहां से कूद पड़ूंगी।
1: कूद पड़ो।
2: बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारे टीकाराम का आइडिया।
0: कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी।
2: ए, मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता।
0: अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना।
2: नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता, और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली और सुबह की हर कड़ी खिल उठती है।
3: तो दोस्तों ये था ये एक ऐसा नगमा जिसने मोहब्बत के कोरे कागज पर यादों के रंग भर दिए। जिंदगी में चाहे कितने भी मसरूफियात क्यों ना हो, कभी कभी ठहर कर उन एहसासात को याद कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया। आपकी शाम, आपकी रात और आपकी हर सुबह संगीत से महकती रहे, इसी दुआ के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ। बने रहिए, क्योंकि आपकी फरमाइशें, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत ही हमारे इस रेडियो सफर की असली रौनक है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गीत और संगीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को यूं ही आगे बढ़ाएंगे बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। फिलहाल ये पैगाम आपके लिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की और मैं हूँ आपका हमराही आपके साथ। रात की खामोशी में कुछ नगमे और भी खूबसूरत लगते हैं, और जब बात हो मोहब्बत के उन इशारों की जिन्हें सिर्फ दिल समझता है, तो ये गीत अपने आप में एक हसीन अफसाना बन जाता है। किसी की आंखों में छुपी शरारत, किसी की मुस्कान में बसी नजाकत और किसी के करीब होने का वो एहसास जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। कभी किसी ने आपको सिर्फ एक नजर से इतना कुछ कह दिया है कि जवाब में आपके पास कोई लफ्ज ही नहीं बचा। अगर हाँ तो शायद आप भी जानते हैं कि इश्क की सबसे खूबसूरत गुफ्तगू अक्सर खामोशी में होती है। तो आइए इसी एहसास को एक बार फिर जीते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। फिल्म कश्मीर की कली का ये सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कभी किसी की आंखों में छुपा सवाल पढ़ा है आपने? कभी किसी ने मुस्कुरा कर यूं पूछा हो कि दिल में कौन बसा है, और आप जवाब देने के बजाय बस नजरें झुका ले हैं। मोहब्बत की दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। यहां कभी एक सवाल में पूरी दास्तान छुपी होती है, और कभी एक मुस्कान में इकरार होता है, और कभी किसी की छेड़छाड़ भरी बात दिल की धड़कनों को बेकरार कर देती है। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही चुलबुली मोहब्बत, मीठी नोक झोंक और दिलकश सवालों से सजा हुआ यह नगमा, एक ऐसा गीत जिसमें प्यार की मासूमियत है, गांवों की मिट्टी की खुशबू है, और रिश्तों की वो अपनापन भरी मिठास जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत अल्फाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का बेहद खूबसूरत सुरीला संगीत, और मुकेश जी और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों का ये जादू, मिलन फिल्म का ये सदाबहार नगमा हमें याद दिलाता है कि इश्क में सवाल भी कितने हसीन हो सकते हैं, और जवाब का इंतज़ार भी कितना दिलकश। तो दोस्तों, ज़रा अपनी फिक्रों को किनारे रखिए, दिल में थोड़ी सी शरारत जगाइए, और याद कीजिए वो लम्हे जब किसी खास शख्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर वो बेहद खूबसूरत मुस्कान आ जाया करती थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में मैं ये बेहद खूबसूरत नगमों को लेकर हाजिर हूँ आपके।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। आप तमाम लोगों के बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँच रहे हैं, कोशिश करेंगे उन्हें भी हम शामिल करें, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ। दोस्तों कहते हैं इश्क भी कितना अजीब है ना, कभी दिल को सुकून देता है, कभी चेहरे पर मुस्कान लाता है, और कभी किसी की एक नज़र, एक अदा, एक प्यारी सी बात हमें इस कदर बेकरार कर देती है कि दिल बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी जिंदगी में यूं दाखिल हो जाए जैसे कोई मीठी धुन खामोश शाम में उतरती चली जाती है, उसकी आवाज सुनते ही दिल खिल उठते हैं, उसकी मुस्कान देखते ही वक्त थम सा जाता है, और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा एक हसीन याद बन जाती है। फिर दिल कहता है हुजूर ये मोहब्बत है या कोई जादू। अगला यह नगमा भी कुछ ऐसी ही शरारत वाला है, कुछ ऐसा ही बेकरारी, ऐसी ही बेकरारी और ढेर सारी मोहब्बत से सजा ये बेहद खूबसूरत नगमा मजरूह सुल्तानपुरी साहब के दिलकश अल्फाज और आरडी बर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों का वो जादू जो सुनते ही दिल में इश्क की हल्की सी लहर दौड़ा दे। फिल्म मेरे जीवन साथी का ये खूबसूरत नगमा जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है, इकरार की मिठास भी है, और किसी खास शख्स के लिए दिल की वो बेकरारी भी जिसे छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। दिल को थोड़ा सा और मचलने दीजिए और उस खूबसूरत एहसास में खो जाइए जहां कोई आपको इतना प्यार, इतना प्यारा लगने लगे कि शिकायत भी मोहब्बत जैसे महसूस हो जाए।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये था मोहब्बत की शरारत और दिल की बेकरारी से सजा बेहद खूबसूरत नगमा। कभी कभी किसी गीत में हमें अपनी ही कहानी सुनाई देने लगती है, किसी की याद, किसी की मुस्कान या किसी के साथ बिताया हुआ वो खूबसूरत लम्हा जिसे हम आज भी दिल में सजो कर रखते हैं, वो तमाम चीजें याद आने लगती है ऐसे नगमों को सुनने के बाद। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हम ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हैं हमराही के इस दिलकश महफिल में। बहुत सारे पैगाम हम तक पहुंचे हैं, जिनमें फहीम साहब ने एक पैगाम भेजा है जम्मू से, किशन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है लेकिन दिल की गहराइयों से अपना प्यार भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कुंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुंवर सिंह ये पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और आप हमें सुनते हैं, आपको पसंद आता है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल के करीब जो नगमे हैं उन्हें ही हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप उसे और पसंद करें और बेहद मोहब्बत के साथ हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। दोस्तों, कहते हैं संगीत की कोई जबान नहीं होती, वो दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंच जाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा साथ यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय, स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 6 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं उन तमाम बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हाजिर हूं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है और हमें एक नई सोच के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अगर कोई सच्चा हम सफर मिल जाए तो छोटी सी दुनिया भी पूरी कायनात जैसे लगने लगती है, और जब साथ में मोहब्बत हो, भरोसा हो और दिल से निकली हुई एक प्यारी सी दुआ हो तो फिर और क्या चाहिए। आज का यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है जिसे आज के इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये बेहद खूबसूरत नगमा कैफियत बयान करता है आपके दिल की, आपके जज्बात की। जहाँ किसी महबूब का साथ मिलना कोई अपना हो जाना जैसे पूरी दुनिया मिल जाने के बराबर है। फिल्म नया दौर का ये बेहद खूबसूरत नगमा जिसे अपनी पुरकशिश आवाज में मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने सजाया है। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर साहब के बेहद खूबसूरत संगीत से सजा ये नगमा जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो जरा दिल को सुकून दीजिए, आराम दीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और महसूस कीजिए वो खूबसूरत एहसास जिसे आप दिल की गहराइयों से चाहते हैं और आप पसंद करते हैं। आपका अपना ये पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे से आज के सफर का आगाज करते हैं।

मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म नया दौर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त जुड़े हैं आप अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी थोड़ी मुश्किल, कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी कुछ खूबसूरत यादें ही हम सफर बन जाती हैं। लेकिन किसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर गुजरता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए जो बीत गया उसे शिकवा बनाकर नहीं, याद बनाकर रखिए, और जो आज आपके पास है उसे पूरे दिल से सजा लीजिए। क्योंकि जनाब वक्त की अपनी रवानी है, ये ठहरता ही नहीं, बस आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना इस सफर में हम भी हर पल को मुस्कुरा कर सलाम करें और आने वाले कल के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी रोशनी और ढेर सारा प्यार रखें। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ आगे बढ़ते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में फिल्म आपकी कसम का ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है आर डी बर्मन साहब का। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर ये जिंदगी के फलसफे को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है ये नगमा।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो शायद फिर लौट कर कभी नहीं आते। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स हमसे दूर हो जाता है, मगर उसकी यादें दिल से कभी दूर नहीं होती। वो भले ही हमसे कुछ सो दूर चला गया हो, हमेशा के लिए भी चला गया हो, लेकिन उसकी यादें हमारे इर्द गिर्द हमारे दिल में बसी रहती हैं। और शायद यही मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। फासले बढ़ सकते हैं, मगर सच्ची भावनाओं की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। इंतजार हमेशा सिर्फ किसी के लौटने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार होता है उस एक खुशखबरी का, उस एक मुस्कान का, या उस पल का जब जिंदगी फिर से कोई हसीन मोड़ ले ले। तो अगर आपके दिल में भी किसी के लिए कोई उम्मीद, कोई दुआ या कोई ख्वाहिश बाकी है तो उसे संभाल कर जरूर रखें, क्योंकि उम्मीद का दिया छोटा जरूर होता है, मगर अंधेरी रात में उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। और इसी एहसास को बड़ी ही खूबसूरती से आवाज देते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र, फिल्म एतबार के इस खूबसूरत यादगार नक्शे के साथ। इस गीत को लिखा है हसन कमाल साहब ने और संगीत है बप्पी लहरी साहब का। तो आइए दिल की खिड़की जरा खोलिए, पुरानी यादों को मुस्कुराकर याद कीजिए और सुनिए मोहब्बत, इंतजार और उम्मीद से सजाइए बेहद खूबसूरत गीत। ये बेहद खूबसूरत कलाम किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कुछ इंतजार हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और उम्मीद की गहराई से रूबरू कराते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:37 और 38 सेकेंड। महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। रात के इस तन्हाई में प्यार मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात और उससे किस तरीके से डटकर मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ें, जब कोई साथी आपका साथ हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है, इन तमाम मौजूदात पर हम और आप बातें भी कर रहे हैं और मिलकर इस सफर को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, और आप अपने पैगामात हमें ईमेल्स के ज़रिए भेज सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए हमारा पैगामात पहुंचाने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप हमें इस पर मेल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम हम तक पहुंचाएं, तब तक हम आपके लिए जो बेहद खूबसूरत चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम या पहचान की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे पर एतबार हो तो रिश्ता खुद ब खुद खूबसूरत बन जाता है। कहा यह भी जाता है कि वादे शब्दों से नहीं उन्हें निभाने से खूबसूरत बनते हैं। मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामे रखना, खुशियों में दिल खोलकर साथ मुस्कराना और हर हाल में अपने रिश्तों की कदर करना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर हम किसी को एक चीज दे सकते हैं तो वो है भरोसा, क्योंकि भरोसा वो दौलत है जो रिश्ते को वक्त के साथ और भी मजबूत बनाते हैं। तो आज जरा उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आपने कभी कोई वादा किया था, और अगर मुमकिन हो तो उस वादे को फिर से दिल में ताजा कीजिए। आखिर रिश्तों की असली खूबसूरती तो साथ होने में ही है ना, साथ निभाने में ही है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में, और इसी खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज में पिरो रहे हैं किशोर कुमार साहब और लता जी फिल्म कसमे वादे के इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिखा है गुलशन बाहरा ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सब के प्यारे आरडी बर्मन साहब।

कितनी खूबसूरत है, बेशुमार मोहब्बत, बेशुमार प्यार। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन देखते ही देखते पल, दिन और साल यादों का हिस्सा बन जाते हैं। शायद इसीलिए जिंदगी हमें हर रोज एक छोटा सा पैगाम देती है। जो पल आज आपके पास है, उसे पूरे दिल से जी लीजिए। क्या पता ये कल फिर हो या ना हो। नाम, शोहरत, दौलत, कामयाबी अपनी जगह, लेकिन इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि उसने अपनी मौजूदगी से कितने दिलों में खुशियां बांटी, मोहब्बत और उम्मीदें छोड़ी उसके दिल में। तो आने वाले कल की फिक्र में आज को मत खोइए। मुस्कुराइए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। किसी अपने से दो मीठे बोल बोल दीजिए, किसी चेहरे पर मुस्कान ले आइए और अपनी छोटी सी खुशी को भी पूरे एहसास के साथ महसूस कीजिए। क्योंकि वक्त का सफर चलता रहता है, लेकिन हमारे अच्छे लम्हे, हमारी बातें और हमारी यादें किसी न किसी के दिल में ठहर जाती हैं। इसी बेहद खूबसूरत फलसफे को अल्फाज दी है साहिर लुधियानवी साहब ने, आवाज दी हम सब के प्यारे मुकेश ने और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। और ये नगमा है 1976 में आई फिल्म कभी कभी से। मैं पल दो पल का शायर हूँ। और आज की छोटी सी बात याद रखिए, जिंदगी कितनी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर पल को कितना खूबसूरत बनाना है ये जरूर हमारे हाथ में है। तो मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और अपने हर आने वाले पल का खैर मकदम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए और जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए इस नगमे की तरह।

मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़ यकीनन हम सबके जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए बस गई है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल है अरुणिमा की, और आप तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे लेकिन इस अगले नगमे के बाद। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो बहुत साधारण होते हुए भी दिल में एक खास जगह बना लेता है। किसी अपने को देखना, उसकी मुस्कुराहट महसूस करना और अचानक दिल में एक खूबसूरत सा ख्याल आ जाना, शायद जिंदगी की असली खूबसूरती भी इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी है। हम बड़ी खुशियों की तलाश में अक्सर उन छोटी नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर रोज़ हमारे आसपास होती हैं। एक प्यारी मुस्कान, किसी अपने की आवाज़, साथ बैठकर की गई छोटी छोटी सी बातें। तो आज ज़रा ठहरिए, अपने आसपास के लोगों को महसूस कीजिए और उन रिश्तों के लिए शुक्रगुजार रहिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को मायने देते हैं। क्योंकि खुशी हमेशा किसी बड़ी मंजिल पर नहीं मिलती, कभी कभी वो रास्ते में ही मिल जाती हैं, किसी की आंखों में, किसी की बातों में और किसी खूबसूरत मुलाकात में। और ऐसे ही एहसासात हर रोज़ हम कहीं ना कहीं ज़रूर देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, नगमा कह ले या गलाम कह ले, जो आज के लिए बेहद खूबसूरत है। जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और संगीत है कुलदीप सिंह साहब का। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तू घना साया। बेहद खूबसूरत आवाज जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी की। अब तमाम लोगों के पैगाम हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि हम उन्हें भी शामिल करते हुए आगे बढ़ें। तो हमारे पास जो पैगाम आया है वो आया है अरविंद साहब हमसे जुड़े हैं, सुशांत प्रिया हमसे जुड़ी हैं और फहीम साहब हमसे जुड़े हुए हैं, साथ में किशन जी हैं जो जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम इन सबको बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर कुंवर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। और एक और पैगाम हम तक पहुंचा है पटना से, नीरज कुमार गुप्ता जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बेहद खूबसूरत पैगाम हम तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद मैं एक बार फिर आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी, जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद खूबसूरत बातें होंगी और किस तरीके से जिंदगी को हम आगे बढ़ाएं उसके बारे में भी हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितंबर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर

0: बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।

पांच सेकेंड। और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का, और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। नई सुबह, नई उम्मीदें और एक नया दिन, यानी जिंदगी ने हमें फिर एक बार बेहतरीन शुरुआत का मौका दिया है। हर सुबह अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है, कल चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, आज की सुबह नई है, और नई सुबह में हम नए नजरिए के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जो रास्ते कल बंद नजर आ रहे थे, हो सकता है आज उनमें कोई नया रास्ता दिखाई दे। बस जरूरत है थोड़े से हौसले, थोड़े से सब्र और एक खूबसूरत सी उम्मीद की। और जब राह मुश्किल लगे तो दिल से एक दुआ निकलती है, ऐ खुदा मुश्किलों को आसान कर दे, ऐ ईश्वर हमारे राह को आसान कर दे, हमारे इरादे को मजबूत कर दे और हमारे कदमों को सही रास्ता दिखा दे। और हम जो भी काम शुरू करते हैं उसे खुदा, उसे ईश्वर के नाम से करते हैं, और इसीलिए तो हम हर दिन का आगाज उसके नाम से करते हैं। लेकिन याद रखें, दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है, क्योंकि मंजिल सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, उसकी तरफ उठाया गया हर छोटा कदम हमें मंजिल की तरफ लेकर जाता है, मंजिल के करीब लेकर जाता है। तो आज इस नई सुबह का एक हम भी वादा खुद से करें, जो मेरे बस में है मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं है उसे फिक्र नहीं, दुआ के हवाले कर दूंगा। और इसी खूबसूरत उम्मीद और इल्तिजा के साथ आज के सफर का आगाज करेंगे मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में ये नगमा, मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। पैगाम फिल्म का यह नगमा है जो हम सबके दिल के बेहद करीब है।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज़ करते हैं, हम हर काम उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है भोर सुहानी की, और इस नई सुबह में मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर है तो समय उसका सबसे खामोश हम सफर है। शायद आप भी ऐसा ही मानेंगे। वो न रुकता है न पीछे लौटता है, बस हमें हर दिन कुछ नया सिखाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। कभी समय के दर्पण में हमें अपनी पुरानी यादें दिखाई देती हैं, कुछ खुशियां, कुछ शिकवे, कुछ अधूरे ख्वाब, लेकिन गुजरे हुए कल का मकसद हमें रोकना नहीं बल्कि बेहतर आज की तरफ ले जाना है। इसीलिए जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए, गुजर जाने दीजिए। जो आज मिला है उसकी कदर कीजिए, और जो कल आने वाला है उसके लिए दिल में उम्मीद और हौसला रखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे

मोम से होकते हुए गुजरती है जो हमें रास्ते में मिलती है। इसीलिए हर लम्हे को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से जिए। एक प्यारी सी बात भी याद रखिए, वक्त बदलता रहता है और यही बदलाव जिंदगी को नया अर्थ देता है। मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता, जैसे अच्छी सुबह भी हर रात के बाद आती है, तो आज अपने अतीत से सीखिए, वर्तमान को जी भर कर जिए और भविष्य का खैर मकदम करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। ऐसा ही पैगाम अगला यह नगमा लेकर आया है, सुरेश वाडेकर साहब की आवाज और आशा भोसले जी उनका साथ दे रही हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे में।

समय के दर्पण में आओ मिलजुल कर एक सपना देखें। सचमुच मिलजुल करके ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों कहते हैं ना, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसी चीजों को हम अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी कोशिश की जाए, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने और बुरा बिल्कुल भी महसूस ना करें। दुनिया में नकारात्मक बातें कम नहीं हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा ये चुनाव रहता है कि हम अपने दिल में क्या जगह देना चाहते हैं। किसी की अच्छी बात सुनकर उसे आगे बढ़ाइए, किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुस्कुरा दीजिए, और अगर कोई बात आपके मन को सुकून को छीन रही हो तो उसे थोड़ा सा फासला जरूर बना लीजिए। क्योंकि जनाब, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और ये बातें हर रिश्ते में कायम जरूर रखें। कभी कभी खामोशी भी एक बहुत खूबसूरत जवाब होती है। और हाँ, जिंदगी में सिर्फ अच्छा देखना ही काफी नहीं है, अच्छा करना और अच्छा बांटना भी जरूरी है। एक छोटा सा नेक काम किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकता है, किसी का पूरा दिन बेहद खूबसूरत बना सकता है। तो आज के दिन की शुरुआत भी हम भी ऐसे ही करें, एक अच्छी और साफ नीयत के साथ। दिल में किसी के लिए नफरत नहीं हो, जबान पर किसी के लिए बुराई नहीं हो, और जहां तक मुमकिन हो अपने आसपास खुशियों की थोड़ी सी रोशनी जरूर फैलाएं, वो भी बगैर किसी भेदभाव के। और इसी मस्त मौला खुशमिजाज मिजाज के साथ आगे बढ़े और ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमा सुने, रफी साहब की आवाज में, फिल्म आया सावन झूमके से।